शाम शाम लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। एंड चलिए, अब वक्त आ चुका है फॉर मी टू से टाटा, बाय बाय, सायोनारा टू यू। लेकिन ना आप कहीं ना जाइए, क्योंकि थर्सडे की शाम है, बस एक दिन और फिर फ्राइडे जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: क्या आप जानना चाहते हो व्हाट सैवेज एक्चुअली लुक्स लाइक? आई विल टेल यू. माय बेस्टी टेक्स्टेड हर एक्स बॉयफ्रेंड सेइंग, हाय, आर यू फ्री टुनाइट? एंड ही वाज लाइक, हाँ, क्यों? शी वाज लाइक, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट नोबडी वांट्स यू. ओके, बाय. एंड दैट वाज सो सैवेज, व्हिच काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी टू आस्क यू कि आपने अपनी जिंदगी में अपने एक्स के साथ इवन होने के लिए, रिवेंज पाने के लिए सबसे ज्यादा सैवेज चीज क्या की है? द मोस्ट सैवेज थिंग आई हैव डन, it's just be indifferent to them. Nothing hurts like pretending as if that person doesn't exist. On that note, मैं अभी भी जानना चाहती हूँ कि आपने सबसे सावित चीज क्या करी, और वो बताने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशनी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead, darling, do what you need to do. लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके ज्वेल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2। जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
1: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
4: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
5: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इन टू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
6: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
7: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: I love you कहना था छोटी बहन को, सामने आ गई बड़ी बहन. उस टाइम आपने रिहर्सल कर रखी थी तो आपने गलती से बड़ी बहन को I love you कह दिया. अब जबरदस्ती के रिलेशनशिप में हो, कितना कॉम्प्लिकेटेड है यार आपका लव लाइफ.
2: The secret box.
1: ये तो जिसकी कन्फेशन है सो है, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में ऐसी ही कोई सीक्रेट कन्फेशन है, फील फ्री टू हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. आई विल बी हैप्पी टू हियर योर स्टोरी. मॉर्निंग ग्लोरी. मेरा नाम बाय द वे है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ अभी है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय रोशी.
1: सो मिस्ट्री कॉलर, व्हाट नॉटी थिंग्स हैव यू बीन अप टू? यस,
3: it's not really been me this time who's naughty. Someone played a naughty prank on me.
1: Really?
3: So ab wo permanently mere upar aa gaya na. So now what are you saying? Who's the joke?
1: What is the story, Morning Glory?
3: So I wanted to get this tattoo done, like of, it was a barcode of my favorite book.
1: Okay, theek hai.
3: And I took the whole design, sab kuch. And I had gone to Goa, so I thought chalo Goa mein sab tattoo karwa lete. But that guy was so dumb. So usne pata nahi kya us code se kya nikala, स्टेंसिल और क्या किया. उसने बना तो दिया, तब ऑब्वियसली आई कांट लाइक स्कैन बारकोड. लाइक ठीक है बन गया ये. एंड आई वेंट टू अ ग्रोसरी स्टोर एंड आई ट्राइड स्कैनिंग द बारकोड, थिंकिंग क्या पता, दो आई थॉट कि कुछ आएगा नहीं बिकॉज ऑब्वियसली यू नो इट्स जस्ट बारकोड ऑन अ स्किन. But the result was just shocking.
1: Right.
3: I'm a packet of green tea. See, I told you I'm a joke.
1: You're not a joke, darling. Ab aap ek green tea ka packet ho, bhai.
3: Yeah, a walking green tea packet.
1: But unless someone is scanning that barcode, but zindagi bhar aapko to pata hi hai na, aapke arm pe hai ki aapke back par hai ki kahan pe hai ye tattoo?
3: It's on my back. So it's like, you know, I'm this super expensive packet of walking green tea that can dissolve in water anytime.
1: Dude, I really like your Goa ka ye jo tattoo artist hai, bahut hi sahi hai. And I think this roshification is not for you so much as it's for him. Pata nahi usne janmooch ke kiya ki nahi, but this is so insane. Hame ek gehri saans leni chahiye aapke tattoo artist ke liye aur aapke liye, Miss Green Tea.
4: You've been roshified.
1: I heard a lot of silly confessions, but this is the coolest one ever. Thank you so much, Miss Green Tea. Agar aap ek green tea ka flavor hote, waise jaane se pehle, what flavor of green tea would you be?
3: I'd like to be tulsi.
1: My goodness. With that voice, you're more like raspberry, but never mind. So tulsi green tea, it was really nice talking to you.
3: थैंक यू
1: सो मच. और अगर आपकी भी जिंदगी में आप कोई टैटू करा कर रिग्रेट कर रहे हो ना, ऐसे ही जैसे मिस तुलसी ग्रीन टी, व्हाई डोंट यू हिट मी अप ऑन इंस्टा एंड वी विल गेट टॉकिंग और FB इवन. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाट यू नीड टू डू, बट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
2: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
3: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: Tera kya hoga, Kalia?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
6: Ab, mirchi kha.
8: Radio Mirchi, it's hot.
9: Let's go crazy.

0: Saad Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you kyunki is film mein kai chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में एक पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेक बैटनो also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से Tom Holland के shoulders पर rest करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal अर्थात Frank Castle aka Punisher and Tom Holland अर्थात Peter Parker जो theater से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully क्योंकि कई बार बच्चे Bollywood के film की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं and it's all required in Spider-Man brand new day but I must give you a disclaimer अगर तूने Spider-Man के franchise के पहली फिल्में नहीं देखी हैं तो प्लीज YouTube पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ Spider-Man की वजह से Jeeturaj Tom Holland का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन Instagram @MirchiJeeturaj जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है Jeeturaj ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू Instagram @MirchiJeeturaj फॉर नाउ Spider-Man brand new day बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय Jeeturaj विद फोर मिर्चीज
0: साथ Jeeturaj ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: प्यारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
6: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानी
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन
7: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी
6: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस
7: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस कृष्णा ज्वेलर्स लेडीज फर्स्ट चॉइस
8: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: I have realized कि मेरा कोई खास दीनमान है नहीं, especially when it comes to men with beards. जैसे ही मेरे ऑफिस में कोई नया इंसान आता है जिसके चेहरे पर एक बियर्ड है and he is taller than 6 feet, I am like, तू है वही दिल ने जिसे पूछा नहीं कि भाई तुम्हारी शादी हो चुकी है कि नहीं, पूछा नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं, पूछा नहीं या आर यू इनटू वुमेन या मेन, बस उसे देखते ही 6 feet एंड taller, बियर्ड ऑन योर फेस, आई ऑलरेडी लव यू. अब ये तो मेरी स्टोरी है, मैं तो बेचारी पैटर्न्स की मारी, एक टाइप है मेरा. अगर आप उस टाइप में फिट करते हैं देन ऑब्वियसली यू शुड हिट मी अप, बट इफ यू आर नॉट दैट पर्सन आई वांट टू आस्क यू, आपका भी तो कोई टाइप होगा, आपके लिए भी तो कोई लड़की या लड़का ऐसे होंगे जिन्हें देखते ही दे जस्ट फिट अ सर्टन काइंड ऑफ लाइक स्टीरियोटाइप इन योर माइंड एंड यू आर लाइक, मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ इसका नाम लेकिन मैं इससे प्यार करता हूँ. अगर हाँ, then tell me about your type na, hit me up on insta ya fb, let's get talking. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ke spelling hai r o c h i e, so go ahead, do what you need to do, find me on the gram ya facebook, but while you do that kahi mat jana kyunki wapas to yahi hai aana, sunte raho Mirchi, it's hot.

0: मजा। बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।
1: अरे आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, गाना बजा दूं।
2: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio

0: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा.
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: It hurts so much ना जब आप किसी से बहुत मोहब्बत करते हो और सामने वाले इंसान को लगता है कि हाँ ठीक है, it's fine. वो आपको हल्के में ले लेता है. फिर आपको क्या करना चाहिए? That's exactly what Naz and I are going to talk about. लेकिन अगर आपकी भी जिंदगी में someone is not taking your love seriously and you want to talk about it, hit me up Insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, and let's get talking. And while you do that, अभी मैं नाज से बात करने वाली हूँ. हेलो, हाई नाज,
2: यू आर कॉलिंग मी.
1: कैसे हो आप?
2: अच्छी भी हूँ, and like I'm talking to you makes me feel so good. Thank you so much for making my life special and actually making me smile on my worst days.
1: Holy baby, why are you having worst days? क्या हो गया? I read your story briefly, लेकिन मैं को एक बार फिर से बता दे.
2: मेरा boyfriend रोशी, like 2 साल पहले, almost 2 साल पहले, I met this guy. मैं just now breakup से निकली थी, क्योंकि रिलेशनशिप में नहीं जाते हैं, इट वॉज मेस्ड अप फॉर मी. लेकिन फिर लाइक आई स्टार्टेड डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर हिम. थोड़े टाइम बाद ही वाज लाइक कि हम लोग है ना रिलेशनशिप में आते हैं, लाइक 7 मंथ्स बैक. तो मैं फीलिंग्स में डूबी हुई थी, आई वाज लाइक क्रेजी फॉर हिम. तो मैंने भी हाँ बोल दिया. आई लॉस्ट माई नाना इन फेब्रुवरी एंड ही वॉज देयर फॉर मी दैट टाइम, एंड आई वॉज इमोशनली टू मच डिपेंडेंट ऑन हिम. फिर पता नहीं उसको पता नहीं क्या हो गया है, अप्रैल से ही यू लाइक बिहेविंग वेरी ऑडली विथ हिम विथ मी. एंड अब वो लाइक मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं देता है, कॉल उसको 25 से 30 बार करना पड़ता है, तब जाके वो एक कॉल कभी कभार उठाता है. फिर उन्होंने कन्वर्जेशन तो करना ही नहीं है, एंड रिलेशनशिप में इम्पोर्टेंट क्या होता है, ट्रस्ट, कन्वर्जेशन, एफर्ट, वही नहीं कर रहा है वो. रोशिस्टेक कि मैं करूँ तो करूँ क्या?
1: आप दोनों सेम सिटी में हो?
2: या.
1: और आप मिलते कितना ऑफन हो?
2: पहले जब कॉलेज डेज में थे तो मोस्ट टाइम मिल सकते थे. अब इट्स लाइक कि मेरी जो मॉर्निंग वॉक्स होती है ना, वहाँ पे हम लोग मिल सकते हैं, इट्स लाइक डेली, बट वो एफर्ट्स ही नहीं करता है मिलने के भी.
1: ओके, अगर तू मेरी जगह होती और मैं तुझे ये स्टोरी सुनाती तो तू मुझे क्या कहती?
2: प्रोबेबली कि उसको छोड़ दे.
1: आई मीन देख, द थिंग इज दैट एक रिलेशनशिप में ना नाज, स्पेशली एक लड़की के लिए, What she needs from a guy is trust, communication, और बहुत सारा प्यार है ना. और अगर एक सामने वाला इंसान आपको ट्रस्ट नहीं दे पा रहा है, आपको प्यार नहीं दे पा रहा है और अपनी अटेंशन नहीं दे पा रहा है, तो फिर बताए इस रिलेशनशिप में क्या बचा?
2: कुछ भी नहीं.
1: एग्जैक्टली, दिस इज द बिल्डिंग ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, जहाँ तेरी उस पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है और उसकी तुझ पर डिपेंडेंसी बहुत कम. तो अब क्या होगा, क्योंकि तू उस पर इतना डिपेंड करती है, वो तुझे कैसे भी मैनिपुलेट कर सकता है. वो तेरा 100 बार फोन ना उठाए तो भी तू उसे छोड़ेगी नहीं, वो तुझसे प्यार ना करे तो भी तू कहीं छोड़ कर नहीं जाएगी. एंड दिस इज द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक टॉक्सिक रिलेशनशिप. बेबी देख, यू लाइक अ यंगर सिस्टर फॉर मी, एंड अगर मेरी एक असली रियल बायोलॉजिकल छोटी बहन होती तो भी मैं उसे यही कहती जो मैं तुझे कह रही हूँ. जब भी मैं देखिए उसकी फोटो ले, जला और उसे फ्लश कर दे, यू विल फील अ लॉट बेटर. आई एम टेलिंग यू, ट्राई करके देख, सब सही हो जाएगा. और रोना नहीं है. एवरी टाइम यू फील वीक, ड्रॉप मी अ मैसेज, वी विल टॉक.
2: थैंक यू सो मच रोशी, आई नीडेड दैट.
1: आई लव यू नाज, एंड आई विल नॉट लेट यू सफर. ओके,
2: आई लव यू टू रोशी, थैंक यू सो मच.
1: आई लव यू माई बेबी डॉल. रोना नहीं है, ठीक है?
2: Yeah.
1: And every day
2: I need to share this with someone, and you are the perfect person for this.
1: I love you. I'll take care of you and I'll protect you. Just don't say yes to a half relationship, okay? ओके बेबी, बाय
2: बाय.
1: अगर नाज की तरह आपकी भी जिंदगी में समवन इज मेकिंग यू क्राई एंड फील नॉट एज ऑसम एज यू रियली आर, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक, एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.
0: मिर्ची फ्रेश माल.
3: लव, लॉस और होप का म्यूजिकल सफर, वे जुनून.

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स। गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लन, न्यू जर्सी। कंडीशंस अप्लाई।
2: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
3: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
2: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
5: एक ही होता है।
2: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: डेटिंग एप्स में ना एक डिवोटेड एप्लीकेशन होनी चाहिए टू अ पर्सन्स रेस्टोरेंट बिहेवियर कि पहले ही आपको पता चल जाए कि ये बंदा जिसके लिए आप राइट स्वाइप करने वाले हो क्या ये अपना सारा खाना टेबल वाला शेयर करता है आपके साथ, क्या ये सिर्फ अपने लिए ऑर्डर करता है, क्या ये आपका खाना भी खुद खा जाता है, या ये सिर्फ ना कि अपने लिए ऑर्डर करता है लेकिन आपके लिए भी ऑर्डर करता है। आई थिंक इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ अ पर्सन्स रेस्टोरेंट बिहेवियर इज, क्योंकि अभी रिसेंटली आई वेंट आउट ऑन अ डेट विद दिस गाय आई मेट ऑन अ डेटिंग ऐप। अब ये बंदा लिजिट 9 out of 10 था टिल वी गॉट टू द पॉइंट वेयर वी हैड टू ऑर्डर आर खाना। तो जनाब ने आगे जाके ऑर्डर कर दिया सब कुछ माइनस द फ्रेंच फ्राइज एंड आई एम लुकिंग एट हिम एंड सेइंग मेरे बर्गर के ऑर्डर में फ्रेंच फ्राइज तूने क्यों माइनस किए? एंड ही सेड कार्ब्स हैं बेबी डॉल एंड नोबडी नीड्स कार्ब्स इन देयर लाइव्स। एंड आई जस्ट लुक्ड राइट इनटू हिज आईज एंड आई सेड तुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कार्ब्स की जरूरत नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, सो यू कैन पे फॉर दिस बिल, मेरा बर्गर पैक कर दो। आई पिक्ड माय बर्गर एंड लेफ्ट दैट डेट। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई डेटिंग ब्लूपर हुई है दैट यू वांट टू डिस्कस विद मी, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, सो गो अहेड डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: सुंदर सस्ती टिकाऊ डाइस के जिसमें पैसे भी नहीं लगते हैं और बहुत सारा नॉटीनेस भी हो जाता है. मेरी बेस्टी को ना आदत है टू फाइंड लाइक दिस रियली इक्लेक्टिक स्ट्रेंज मैन डेटिंग एप्स पर. उसका सीन मतलब कभी खत्म नहीं होता. एक बंदा बाहर नहीं जाता, दूसरा ऑलरेडी अंदर होता है. एंड शी वाज टेलिंग मी कि यार तू ना कोई अच्छी सी गेम सजेस्ट कर, वीकेंड पर हम दोनों ये गेम खेलेंगे, मतलब उसका बंदा और वो. और क्योंकि आई एम द मोर क्रिएटिव आउट ऑफ द टू ऑफ अस, मैंने उसे बोला कि व्हाई डोंट यू लाइक प्ले दिस डर्टी डाइस गेम. ये मैंने शायद किसी मैगजीन में कहीं पढ़ा था कि जो डाइस होती है ना, जिसे हम मतलब सांप सीढ़ी खेलते हैं और लूडो खेलते हैं, उसमें क्या होता है, छः आपके कॉर्नर्स होते हैं और छः के छः साइड्स में नंबर्स होते हैं ना, 1, 2, 3, आप डाइस रोल करते हो और जो भी नंबर आता है. तो आई सेड कि तू छः ऐसी नॉटी चीज़ें लिख ले और डाइस में ना हर नंबर के साथ एक नॉटी चीज़ जोड़ दे. जैसे कि अगर मान लो आपने 2 रोल किया और 2 के साथ लिंक्ड है कि यार हमें बालकनी में जाकर किस करना चाहिए, देन यू विल हैव टू डू दैट. तो आई सेड ऐसे ना तू लाइक 6 × 2 12 चीजें सोच ले और ऐसे ये सारा दिन तुम डाइस रोल कर सकते हो और जो भी नंबर आएगा उसके अगेंस्ट तुमने जो भी लिखा है कॉरेस्पॉन्डिंग विद दैट, यू जस्ट हैव टू डू दैट नॉटी थिंग. भाई उस बंदी ने इतना गंद मचाया ना इस वीकेंड में, इतना गंद कि आई थिंक उसके नेबर्स एक पिटिशन साइन कराने वाले हैं कि इस लड़की को बंद कमरों के अंदर ही रखना है. लेकिन द थिंग आई एम टेलिंग यू इज दैट अगर आपके पास भी You don't have these really expensive, you know, naughty board games जो abroad मिलती हैं imported, तो आप घर पे भी अपना ये एक simple सा dice लेके उसे dirty dice game में convert कर सकते हो and imagine the kind of fun you can have. क्योंकि the only limitation is your imagination. अब सोचो इसके बारे में और अगर आपको tips and tricks चाहिए, why don't you hit me up insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So do whatever you have to do baby, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आई लव यू कहना था छोटी बहन को, सामने आ गई बड़ी बहन, उस टाइम आपने रिहर्सल कर रखी थी तो आपने गलती से बड़ी बहन को आई लव यू कह दिया, अब जबरदस्ती के रिलेशनशिप में हो, कितना बहन को सामने आ गई बड़ी बहन, उस टाइम आपने रिहर्सल कर रखी थी तो आपने गलती से बड़ी बहन को आई लव यू कह दिया, अब जबरदस्ती के रिलेशनशिप में हो, कितना कॉम्प्लिकेटेड है यार आपका लव।

0: to, yes?
1: It's not really been me this time who's naughty. Someone played a naughty prank on me.
0: Really?
1: तो अब वो permanently मेरे ऊपर आ गया ना, तो
0: What
1: now
0: are you
1: it's me
0: saying?
1: who's the joke.
0: What is the story, Morning Glory?
1: So I wanted to get this tattoo done, like
0: हाँ.
1: of it was a barcode of my favorite book.
0: Okay, ठीक है.
1: And I took the whole design, सब कुछ. And
0: हाँ.
1: I had gone to Goa, तो I thought चलो गोवा में सब टैटू करवाते करवा लेते.
0: हाँ.
1: But
0: हाँ.
1: that guy was so dumb.
0: हाँ.
1: तो उसने पता नहीं क्या उस कोड से क्या निकाला स्टेंसिल और क्या किया,
0: हाँ.
1: उसने बना तो दिया. तब ऑब्वियसली आई कांट लाइक स्कैन बार कोड, सो आई वाज लाइक
0: राइट.
1: ठीक है बन गया ये.
0: हाँ.
1: एंड आई वेंट टू अ ग्रोसरी स्टोर एंड आई
0: हाँ.
1: ट्राइड स्कैनिंग द बार कोड थिंकिंग क्या पता, एट दो आई थॉट कि कुछ आएगा नहीं बिकॉज
0: हाँ.
1: ऑब्वियसली यू नो इट्स जस्ट बार कोड ऑन अ स्किन.
0: हाँ.
1: बट द रिजल्ट वॉज जस्ट शॉकिंग.
0: व्हाट?
1: आई एम अ पैकेट ऑफ ग्रीन टी. See, I told you I'm a
0: You're
1: joke.
0: not a joke, darling. अब आप एक ग्रीन टी का पैकेट हो भाई.
1: Yeah, a walking green tea packet.
0: बट अनलेस समवन इज स्कैनिंग दैट बार कोड, बट जिंदगी भर आपको तो पता ही है ना आपके आर्म पे है कि आपके बैक पर है कि कहाँ पे है ये टैटू.
1: It's on my back, so it's like you know I'm this super expensive packet of walking green tea that can dissolve in water anytime.
0: Dude, I really like your गोवा का ये जो टैटू आर्टिस्ट है बहुत ही सही है. एंड आई थिंक दिस रोशिफिकेशन इज नॉट फॉर यू सो मच एज इट्स फॉर हिम. पता नहीं उसने जानबूझ के किया कि नहीं, बट दिस इज सो इनसेन. हमें एक गहरी सांस लेनी चाहिए आपके टैटू आर्टिस्ट के लिए और आपके लिए, मिस ग्रीन टी.
2: You've been roshified.
0: I heard a lot of silly confessions, but this is the coolest one ever. Thank you so much, Miss Green Tea. अगर आप एक ग्रीन टी का फ्लेवर होते वैसे जाने से पहले, what flavor of green tea would you be?
1: I'd like to be tulsi.
0: My goodness. With that voice, you're more like raspberry, but never mind. So tulsi green tea, it was really nice talking to you. थैंक यू सो मच. और अगर आपकी भी जिंदगी में आप कोई टैटू करा कर रिग्रेट कर रहे हो ना ऐसे ही जैसे मिस तुलसी ग्रीन टी, व्हाई डोंट यू हिट मी अप ऑन इंस्टा एंड वील गेट टॉकिंग और FB इवन. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. काम है आपसे प्यार करना. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाट यू नीड टू डू, बट कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.
2: ओह गॉड, वन मोर.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: और अगर ये सच है तो ये सच क्यों है? आज ऑफिस में हम सब इकट्ठे बैठकर प्यार को डिस्कस कर रहे थे, माय फेवरेट टॉपिक, और बात कुछ ऐसे चली कि वी वर सेइंग कि एक रिलेशनशिप में हमेशा एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से ज्यादा इन्वेस्टेड होता है। मेरे काफी रिलेशनशिप्स में, इफ आई लुक बैक, एक्चुअली 90% रिलेशनशिप्स में ज्यादा इन्वेस्टेड मैं रहती थी, और मेरे आसपास जो लोग थे जिनका नाम मैं नहीं लूंगी बिकॉज यू नो ऑल ऑफ देम, वो लोग डिस्कस कर रहे थे वेरिंग डिग्रीज में कि कैसे इन देयर केसेस द गाइज आर मोर इंटरेस्टेड एंड इन्वेस्टेड इन द रिलेशनशिप दैन द गर्ल्स। एंड आई वॉज थिंकिंग टू माई सेल्फ, यार ये प्यार की सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है कि एक रिलेशनशिप में जहां दोनों जनों को इक्वली अवेलेबल और पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, वहां पर सिर्फ एक इंसान ऐसा होता है जो ज्यादा देता है और एक इंसान होता है जो ज्यादा लेता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे रिलेशनशिप चलते नहीं है, बट किसी यूटोपियन वर्ल्ड में कितना अच्छा होता ना कि जितना मैं प्यार कर रही हूँ उतना ही प्यार मैं वापस पा भी रही हूँ। अच्छा आप ये बताओ कि आपके रिलेशनशिप में आर यू द गिवर और द टेकर, और आप जैसे भी हो क्या आपको वैसे रहना पसंद है, वुड यू लाइक टू हैव इट एनी अदर वे? एंड टेल मी आपकी जिंदगी की लव स्टोरी, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड ऑनेस्टली जिसके पास लव है ना उसके पास सब है, एंड आई लव यू लोड्स।

0: साड़ी सुन सात हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार ऑन गाना नंबर 10। ये उन गानों में से है जिनके मैं लिरिक्स कभी भी ठीक से गा के नहीं बता पाऊंगी, बस धुन गा दूंगी और समझ जाओ।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। अभी के अभी जाओ इंस्टाग्राम पे, फोन हाथ में ही रहता है, कनेक्ट करो @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम पर। कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। कई बार ऐसा होता ना कि गाने के बोल नहीं याद रहते, सिंगर कौन है वो भी आप में भी भूल जाएं, लेकिन वो शुरू वाली धुन या कोई इंस्ट्रूमेंटल पीस वो कहीं से भी आप सुने एकदम पूरा गाना याद आ जाता है। सिर्फ गाना ही नहीं, फिर गाने की वीडियो, सिंगर की हिस्ट्री सब याद आ जाती है। हर कंपोजर चाहता है कि उनके गाने में ऐसी टेक अवे मेलोडीज हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंटल पार्ट हो जिन्हें कहीं से भी हम सुने और गाने के साथ जोड़ते हैं। एक आर्टिस्ट जो बहुत सक्सेसफुली ये करते हैं इस बादशाह। चाहे आप गाने के लिरिक्स से अग्री करें ना करें, लेकिन बीच में एक मेडली होती है जिसपे आप थिरक ही जाते हैं, लाइक दिस वन इन मर्सी। माई फेवरेट बादशाह इंट्रो हैज टू बी कर गई चुलका, ये वाला पार्ट। सच पावरफुल आइकॉनिक इंट्रोज कि एक बार गाना सुनने के बाद आप उसे गुनगुनाते रहेंगे। नाउ @RJKanika इंस्टाग्राम पर आओ, मैं आपको बादशाह के गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ। जल्दी जल्दी @RJKanika पर आओ और बताओ ये कौन से गाने का इंट्रो है। @RJKanika और इंस्टाग्राम पर आगे मुझे बताओ, साइड वाले को मत बताओ, आई नो बहुत इजी वाला है। बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाला गाना जो है ऐसे आर्टिस्ट का है जिनकी आवाज ही इतनी आइकॉनिक है दैट यू नो इट्स संजू राठौर। गाने का नाम है बैंगल्स। 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक बैंगल्स इज ऑन गाना नंबर 9। उसके बाद एश किंग का किनिया सोनी ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 9।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 7।

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: फरक की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है तारे, अ नई नवेली एंट्री दिस वीक, डेब्यूइंग सीधा ऑन गाना नंबर 6. मुझे लगता है कि हम सब ने मिलकर तारे को इतनी जोर से मैनिफेस्ट किया कि वो हमारे शो में डेब्यू कर चुका है ऑन नंबर 6. उससे पहले हमने सुना गाना नंबर 7 पर ज़ारा खान स्केल्स का गाना मूव बॉडी.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो हेलो, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. यू नो, हर पार्टी में एक टाइम आता है जब सिर्फ पंजाबी गाने चल रहे होते हैं. कहीं ना कहीं पिछले 10-15 साल में हमारा एसोसिएशन विद पंजाबी म्यूजिक ही सिर्फ ये था. एंड जब मैं कहती हूँ ना हमारा, आई मीन वो लोग जिन्हें पंजाबी बोलनी या समझनी नहीं आती, और जितनी भी आती है वो सिर्फ गानों से आती है, अपने फेवरेट आर्टिस्ट और सिंगर से आती है. लेकिन पिछले 4-5 साल में आई हैव सीन अ मैसिव ट्रांजिशन. और मेरे जैसे लिसनर के साथ ही, जो पहले सिर्फ पंजाबी गानों को डांस वाले गानों की तरह कंसिडर करती थी, आज आई हैव माई मोस्ट रोमांटिक फेवरेट्स फ्रॉम पंजाबी सॉन्ग्स. एंड ऑनेस्टली अब ये प्रूव भी नहीं करना पड़ता तो क्या हुआ, मुझे नहीं समझ में आती तो क्या मैं गाने सुन नहीं सकती. बिकॉज आर्टिस्ट लाइक AP टिल्लों, दिलजीत दोसांझ, करण औजला, उन्होंने वो गैप ही क्लोज कर दिया. एंड इस लीग के आर्टिस्ट में एक नए फेवरेट है कॉल्ड कुंवर, जिन्हें आज हम एक स्पेशल स्पॉटलाइट देने वाले हैं. बंदा भटिंडा का है, टोरंटो में बेस्ड, काफी इंटरेस्टिंग उनका म्यूजिक है. पंजाबी फोक को लेके उसमें हिप हॉप R&B का तड़का लगाते हैं एंड बैंगर्स ऑन बैंगर्स रिलीज कर रहे हैं. कुंवर का एक गाना है कॉल्ड क्रेजी फॉर यू, जिसके पीछे सब क्रेजी हो गए हैं. सच अ बिग सोशल मीडिया हिट दिस सॉन्ग हैज बीन. और बिल्कुल वही वाली फीलिंग है जो एक बंदे को जब उसे किसी पे क्रश होता है तब जो एक फीलिंग होती है ना, दैट आई हैव गॉन क्रेजी, मैं उसके बारे में कुछ और सोच ही नहीं पा रहा हूँ, दिन में भी, रात में भी, नींद में भी. फोन बार बार चेक करना, गेड़ी मारते हुए बस वही सोचते रहना, दोस्तों से मिलना सो दैट हम सिर्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाएं कि उसके बारे में ना सोचे. ये सॉन्ग उसी को सेलिब्रेट करता है. इट्स अ वेरी हाई एनर्जी, फुल ग्रूवी, लेट नाइट सॉन्ग भी है, पार्टी सॉन्ग भी है. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आर्टिस्ट का नाम है कुंवर, गाने का नाम है क्रेजी फॉर यू. आर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: Crazy for you by Coer this week on our Gana Spotlight at RJ Kanek on Instagram पर आओ. बताओ मुझे कोई ऐसा गाना जो आज भी आप रोज सुन रहे हो पर उसके लिरिक्स बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं. वो पंजाबी गाना हो सकता है, हरियाणवी गाना हो सकता है, इंग्लिश गाना भी हो सकता है, पर अच्छा लगता है तो लगता है. एट RJ Kanek पर आके मुझे बताओ आपका वो कौन से वाला गाना है. नाउ बैक द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. गाने का नाम है उड़ी उड़ी. 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार अनीश और कारण, हृदय का गाना. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार उड़ी उड़ी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5.
1: नंबर 5.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: तू किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती के कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।
1: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके शीशा वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। उससे पहले नूर खान मधुर एक्सो का आरजू दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi
1: पर, this is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। इस बंदी का नाम है RJ कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJ कनिका। कोई बातें बतानी है, कोई गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। ट्रस्ट मी, इट रियली मैटर्स अ लॉट। कभी कभी हम किसी को कुछ बात बताते हैं कि हाँ आपका ये काम यहाँ देखा था, या कभी कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, करते वक्त शायद हमें रियलाइज नहीं होता कि वो दूसरे इंसान के लिए कितनी बड़ी डील होती है। कुछ तारीफें ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर याद रह जाती हैं, कुछ इंटरैक्शंस ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर याद रह जाते हैं। मेरे लिए वो आप लोगों के मैसेजेस हैं, एंड दैट पर्टिकुलर शो विच आई रिमेम्बर, मेरा पहला शो था ऑन एयर, साल था 2019, अगस्त में ही मेरा पहला शो गया था और मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, एंड मैंने फुल एडमिट कर रखा था शो पर कि मेरा पहला शो है। इतने सारे मैसेजेस आए मुझे आप लोगों के, यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल द बेस्ट करने का, बहुत मजा आ रहा है एक गाने के बारे में, सो यू स्टार्टेड एंगेजिंग विद मी एंड इट मेड माई डे। अब मैं वो पुराना शो सुनती हूँ तो आई रियलाइज कि इतना भी अच्छा नहीं था, पर इट वॉज योर लव, योर कॉम्प्लीमेंट्स जो मुझे हमेशा याद रहेंगे। और एक आर्टिस्ट के साथ तो ये और भी गहरा होता होगा, किसी फैन का मैसेज या किसी ऐसे इंसान से तारीफ जिन्हें आप खुद अपना आइडल मानते हैं। आई रिमेम्बर ऐसी ही मेरी कॉन्वर्जेशन हुई थी अरमान मलिक के साथ बैक स्टेज एक अवार्ड फंक्शन पे, आफ्टर उन्हें एक अवार्ड मिला। पर अरमान ने मुझे कहा दैट उन्हें जितने भी अवार्ड मिले, सोनू निगम ने जब एक बार अरमान को फोन किया था और तारीफ करी थी कि बॉय यू किल्ड इट, मैं तेरा गाना सुन रहा था रेडियो पे और मजे आ गए, सोनू निगम का वो कॉम्प्लीमेंट अरमान के लिए हर अवार्ड से ज्यादा मीन करता है। पिछले साल इसी शो पर मेरी सोनू निगम जी से बात हुई थी और मैंने उनसे इस बारे में पूछा, एंड दिस इज व्हाट ही सेड।
3: अरमान टोल्ड मी दैट कोई अवार्ड या कोई वैलिडेशन उसके ऊपर नहीं है, ही सेड सोनू निगम कॉलिंग मी कि तेरा गाना रेडियो पे सुना है और तूने अच्छा गाया है इज द बिगेस्ट अवार्ड ही हैज रिसीव्ड।
4: मैं बिल्कुल इस फीलिंग को समझता हूँ। जब हमारे बड़ों ने हमारे बारे में कुछ कहा है, जब मंदाड़ी साहब ने मुझे बैक स्टेज कहा था एक बार, यू शुड हैव बीन बोर्न इन आवर टाइम, मार्वल एट द वे यू सिंग, एंड यू आर बोर्न इन द रॉन्ग एरा, यू शुड हैव बीन बोर्न इन आवर टाइम्स, वी वुड हैव गिवन यू द राइट कॉम्पिटिशन। ये मुझे अब इससे बड़ा अवार्ड क्या होगा। लता जी बोले मुझे सोनू निगम पसंद है, जगजीत सिंह बोलते थे मेरा फेवरेट है सोनू निगम और AR रहमान, तब AR रहमान भी नए थे, मैं भी नया था, सो यस आई वैल्यू दोस कॉम्प्लीमेंट्स।
1: यही बात है ना, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज कोई ट्रॉफी नहीं बट ये कॉम्प्लीमेंट है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, वी हैव टू प्ले द सॉन्ग, जैसे सुन के सोनू निगम की तारीफ निकल गई, हमारी 10 साल से निकल रही है, अरमान मलिक की आवाज, अमाल मलिक की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है मैं रहूं या ना रहूं, आई कांट बिलीव इस गाने को 10 साल हो गए। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

The vocal capacity of Arman Malik is unparalleled and this song, अभी भी मुझे goosebumps आते हैं इस गाने को सुन के. I think this will go down as one of those classics जो मैं आज से 10 साल बाद भी play करूंगी और हमें ऐसा ही feel होगा. Arman Malik की आवाज, Arman Malik की composition, that was मैं रहूं या ना रहूं. At RJ Kalinga on Instagram पर आओ and tell me about your story. कभी कोई ऐसा compliment मिला हो जो आज भी बहुत special feel कराता है, मुझे आके बताओ. Back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खा का गाना, इट्स अ कुक स्टूडियो भारत सॉन्ग. गाने का नाम है ए अजनबी. पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जम्प करके ये गाना पहली बार टॉप टू में गया है. ए अजनबी फ्रॉम कोक स्टूडियो भारत, 16 हफ्ते इस काउंटडाउन पर बिताने के बाद पहली बार ऑन गाना नंबर 2. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
1: Mirchi sun rahe hain aap, show ka naam hai Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi which is all about the hottest pop music of the week. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram par jao, jaldi jaldi follow karo, handle is @RJKanika. Follow karna to bilkul free hai, koi gaana suggest karna hai, baatein batani ho, bindaas aake hit me up. I might feature your favorite songs on the show. It's time for what we call कसर क्लासिक, जहां पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं, और ये हमारे शो का सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड सेगमेंट है. इतने सारे डीएम्स, इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि ये वाला गाना, वो वाला गाना. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज लकी अली का तेरे मेरे साथ. इस गाने के बाद इतने सारे थैंक यूज आए, इतने सारे और रिक्वेस्ट आए, और उन बहुत सारे रिक्वेस्ट में से द सॉन्ग वी आर गोइंग टू प्ले दिस वीक इज दीवाना.

गाने का नाम है दीवाना तेरा बाय द वन एंड ओनली सोनू निगम। साल 1999, म्यूजिक साजिद वाजिद का, लिरिक्स फैज अनवर के। ये तब के हिंदी पॉप म्यूजिक की सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉप एल्बम में से एक थी एंड ये गाना उसका टाइटल ट्रैक। बट बियॉन्ड ऑल द नंबर्स, बियॉन्ड द सेल्स, आज 2026 में भी जब मैं ये गाना सुनती हूँ, इट टेक्स अस बैक टू दो सिंपलर टाइम्स यार, जिसके बारे में बस हम कहानियों में सुनते हैं। जब प्यार प्यारा था, इनोसेंट था, एक भोला बंदा, वो पहले पहले प्यार वाली चीजें, यू नो, जब आप किसी को चाहते थे और बस चाह कर ही खुश हैं, एक तरफा प्यार में खुश हैं, तेरी मर्जी तो आए ना आए। आई रिमेम्बर सोनू निगम ने हमें कई दफा इस शो के जरिए बताया है दैट इतने सारे लोग उनके पास आते थे, बोलते थे ये गाना सुन के इतनी जोर से प्यार आया कि मैंने जाके प्रपोज ही कर दिया। एक्चुअली 90s एंड अर्ली 2000s का ये वेरी प्रपोजल फर्स्ट सॉन्ग था। तो अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, लेट्स फील द लव इन द वॉइस ऑफ सोनू निगम। दीवाना एल्बम से दिस इज दीवाना तेरा, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनेका, दिस इज गाना इंडी टॉप 10, एंजॉय।

What an utterly butterly song, man. Sonu Nigam ki awaaz and the range in this composition. Gaaning Aram Deewana Tera on a cassette classic this week at RJ Kaneko on Instagram par aao. 90s, 2000s ke yehi wale gaane, you know, which makes us feel all the love again. Kaun sa hai wo gaana? From the pop classics, humse aake share karo. We might feature your favorite next week. Now back to the countdown. It's time for the numero uno song of the week. ये गाना 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर डटा हुआ है. पिछले हफ्ते नंबर 2 पर था, यानी इस हफ्ते एक पोजीशन ऊपर जंप करके वापस इसने नंबर 1 की पोजीशन ले ली है. गाने का नाम है बैरन, आर्टिस्ट का नाम है बंजारे. दिस हरियाणवी सॉन्ग इज

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा. And for God's sake किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है, यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है, ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने. वो क्या है, ओके आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

वेलकम। ये वो टाइम होता है जब आप और मैं मिल बैठते हैं और उस जमाने के गानों को, उस जमाने की बातों को एंजॉय करते हैं। सो आ गई आपकी प्यारी श्रेया और आज मैं एक हॉरर फिल्म लेकर के आई हूँ। अब आप इसको हॉरर फिल्म भी कह सकते हो, मिस्ट्री फिल्म भी कह सकते हो। यू नो एट दैट टाइम हॉरर और मिस्ट्री को बहुत अलग अलग नहीं देखा जाता था। थोड़ा सा हॉरर में मिस्ट्री होती थी और थोड़ी सी मिस्ट्री में हॉरर होता था। लेकिन एक बड़ी खास बात है इस फिल्म की। वेल दिस रिमेन्स द ओनली फिल्म जो कि डैनी ने, हाँ जी द एक्टर डैनी ने डायरेक्ट की थी। ये उनकी पहली और आखिरी डायरेक्टेड फिल्म थी। इसमें थे राजेश खन्ना और किम और इसमें थी अरुणा ईरानी। वेल ये किस फिल्म की बात कर रही हूँ, मूवी का नाम है फिर वही रात। 1980 की ये फिल्म है। आपको ना आज उसके बारे में बताऊंगी। कम राइट बैक, मिल करके गप्पे लड़ाएंगे इसी फिल्म के बारे में। मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ಇನ್ನಾಯ ಅದು.

0: घोड़ा चतुर घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुर घोड़ा चतुर एक पे रहना या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा
1: एक चतुर ना।

अच्छा, ऐसे बहुत कम दोस्त होते हैं जो एक्चुअली में आपकी मदद करने के लिए तैयार हों और उनके अंदर वो कैपेसिटी भी हो टू हेल्प यू इन योर प्रॉब्लम्स। आई मीन, वैसे तो सारी दुनिया आकर के ज्ञान दे देती है, लेकिन ऐसे बहुत कम दोस्त हैं। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म फिर वही रात। 1980 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म में थी किम। किम का ये डेब्यू फिल्म थी, राजेश खन्ना, अरुणा ईरानी। फिल्म वॉज मिस्टीरियस, फिल्म वॉज हॉरर फिल्म, थोड़ी सी हॉरर थी, ज़्यादा नहीं थी। इस फिल्म में डैनी जी ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था, एंड दिस रिमेन्स द ओनली फिल्म जिससे उन्होंने डायरेक्शन शुरू किया एंड ख़त्म भी कर दिया। मतलब इस फिल्म के बाद उन्होंने डायरेक्शन में कदम नहीं रखा। अब ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि डैनी जी जो थे ना, वो सेम काइंड ऑफ रोल्स कर करके थक गए थे, और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे NNCP साहब, वो डैनी जी के बहुत ही क्लोज दोस्त थे। तो एक बार डैनी जी ने ना उनसे बस ऐसे ही शेयर किया कि अब मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, मुझे ना एक्टिंग में मज़ा नहीं आ रही है। तो NNCP जनरली कोशिश करते थे कि उनकी फिल्में नए डायरेक्टर्स यू नो डायरेक्ट करें। ही यूज टू गिव चांसेस टू न्यू डायरेक्टर्स। और जब ये बात उनके खुद के दोस्त ने कह दी तो फिर कैसे नहीं हो। तो ये जो फिल्म है फिर वही रात, ये डैनी जी ने डायरेक्ट की है, एंड दिस रिमेन्स द ओनली फिल्म दैट ही इज डायरेक्टेड। लेकिन ये करने का मौका उनको किसने दिया? उनके दोस्त NNCP ने। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, आज इसी फिल्म की बातें। कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

यंग टैलेंट को एक चांस देने में बिलीव करते थे प्रोड्यूसर एन एन सिप्पी साहब। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, फिर चाहे वो एक्टर्स हो या फिर डायरेक्टर्स हो। सो डायरेक्टर्स तो उन्होंने कई सारे नए नए बनाए, जैसे कि सुभाष वाही, जैसे कि अशोक रॉय, सीपी दीक्षित। एंड जब बात हुई डैनी जी की, तो उनके साथ तो ऑलरेडी वो दो फिल्मों में काम कर चुके थे, वन वॉज चोर मचाए शोर एंड द अदर वन वॉज फकीरा। इन दोनों में उन्होंने डैनी के साथ काम किया था, मतलब ही वॉज अ प्रोड्यूसर एंड डैनी जी ऑफकोर्स फिल्म में थे। इसी के दौरान दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और डैनी ने बस ऐसे ही कहा कि मैं अब सेम तरीके के वही रोल करके थक गया हूँ, मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे ना एक फिल्म डायरेक्ट करनी है। ऐसे में सिप्पी साहब ने कहा, अरे क्यों नहीं, मेरे पास एक स्क्रिप्ट तैयार है, ये एक हॉरर फिल्म होगी, फिल्म का नाम था फिर वही रात, तो ये तुम डायरेक्ट कर लो। अब पता नहीं, डैनी जी को शायद डायरेक्शन इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि इसके बाद उन्होंने और कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की, ही वेंट बैक टू एक्टिंग। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, इस फिल्म की बातें होती रहेंगी, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड्स सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड्स सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: स्पाइडर्स हैव थ्री लाइफ साइकल।
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है, ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है, क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओह ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने, वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची का।
6: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

शशि कपूर इस फिल्म में होने वाले थे, लेकिन फिर किसी ने कहा ना ना ना, काका यानी राजेश खन्ना का सिक्का चल रहा है आजकल बॉलीवुड में, यानी बड़े पर्दे पे, उनको लो। तो फिर क्या हुआ, इस हॉरर फिल्म में आ गए शशि कपूर की जगह राजेश खन्ना। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म फिर वही रात। ये फिल्म में थे काका राजेश खन्ना अलोंग विथ किम, और किम का ना ये डेब्यू फिल्म थी। वेल, पहले इसमें शशि कपूर होने वाले थे, लेकिन उस टाइम पे जो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे, स्पेशली प्रोड्यूसर्स होते थे, वो ना मार्केट रिसर्च पूरी करके आते थे कि कौन सा एक्टर चल रहा है, किस पे पैसा लगाना है, और उनका बहुत से होता था इन द कास्ट ऑफ द फिल्म। सो इस फिल्म में भी भाई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि हम चाहते हैं कि इसमें काका आए यानी राजेश खन्ना आए, नॉट शम्मी कपूर साहब। वेल, फिर क्या था, डैनी जी की ये ओनली डायरेक्टेड फिल्म थी, और उन्होंने काका जो कि उनके दोस्त थे, मतलब हल्के फुल्के वाले दोस्त थे, बहुत गहरी दोस्ती नहीं थी, उनको पूछा एंड काका ग्रेट। दिस इज हाउ दिस हॉरर फिल्म वॉज मेड। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, कम राइट बैक।

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
3: आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई

लेकिन इस फिल्म के बाद से दोस्ती खत्म हो गई। पुरानी जींस पे आप हो श्रेया के साथ। आज जिस फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है फिर वही रात। 1980 की फिल्म है। 15th अगस्त 1980 को इसको रिलीज किया गया था। राजेश खन्ना थे इसमें, किम थी, एंड दिस वाज़ दी ओनली फिल्म जो डैनी जी ने डायरेक्ट की थी। ये फिल्म पे पैसा लगाने वाले यानी प्रोड्यूसर थे एनएन सिप्पी साहब, जो कि नए डायरेक्टर्स को चांस देते थे, और इस बार उन्होंने चांस दिया था अपने दोस्त डैनी को। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई ये बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई, पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। ये बात ने एक दरार पैदा कर दी। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो कि फ्रेंड्स हुआ करते थे यानी सिप्पी साहब के बीच में और डैनी जी के बीच में, वेल डैनी जी ने तो ये तक कहा कि इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि इंडस्ट्री में आपका कोई दोस्त नहीं होता, सब एसोसिएट्स होते हैं। लेकिन फिर एक बार और दोनों ने एक साथ काम किया, वो कितने साल बाद था और क्यों किया, आई विल लेट यू नो। कम राइट बैक। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

18 साल लगे इस दोस्ती को वापस जमने में, पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, पर मुझे समझ नहीं आया कि कैसी दोस्ती हो सकती है। आई मीन इमेजिन, तुम अपने दोस्त को कोई काम देते हो, कोई ड्यूटी देते हो, ओके, और उसमें उस ड्यूटी में माना कि तुम्हारा पैसा लग रहा है, पर तुमने उसको ट्रस्ट किया ना, इसलिए उसे दिया। अब उस ड्यूटी में अनइंटेंशनली अगर परफॉर्मेंस नहीं होती है, जिसमें उस बंदे का, तुम्हारे दोस्त का कोई इंटेंशन नहीं था कि वो खराब हो, लेकिन नहीं होती है, लोगों को नहीं पसंद आता है, तो क्या आप अपने दोस्त से नाराज हो जाओगे? अब ऐसे ही कुछ हुआ था सिप्पी साहब के बीच में और डैनी जी के बीच में, फिर वही रात जिसकी आज बात कर रहे हैं ना, इस मूवी की 1980 में ये फिल्म आई थी, एंड ये डैनी जी की इकलौती डायरेक्टेड फिल्म थी। डैनी जी अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते थे, वो सेम रोल्स कर करके एकदम बोर हो चुके थे। एट दैट टाइम सिप्पी साहब उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, तो सिप्पी साहब वैसे भी नए डायरेक्टर्स को मौका दिया करते थे, तो उन्होंने डैनी से कहा कि ठीक है, ये एक स्क्रिप्ट आई है मेरे पास, इस फिल्म को तुम डायरेक्ट कर लो। Now what happened was that this film actually flopped at the box office. 15th August 1980 पे ये फिल्म रिलीज हुई, लेकिन फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली, जबकि इसमें थे काका यानी राजेश खन्ना एंड किम। अब इसका पूरा ठिकरा जो है वो सिप्पी साहब ने डाल दिया भाई डैनी जी के ऊपर, कि उनको तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, वो इतनी अच्छी फिल्म नहीं बना पाता, ऑल ऑफ दैट। दोनों दोस्तों ने एक्चुअली में 18 साल तक एक दूसरे से बात नहीं करी, एंड आफ्टर 18 ईयर्स उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स यू नो एक पिटारे में डाला और उसको बंद किया, एंड दे वर्क टुगेदर इन द फिल्म कॉल्ड सिलसिला है प्यार का। लेकिन इसमें 18 साल लग गए, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये दोस्ती नहीं होती। आप अपने दोस्त से नाराज कितने दिन, एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन तो जाके उसे झप्पी पा ही लेते हो, है ना? पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

डैनी जी ने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो बहुत बहुत नर्वस थे, एक्सट्रीमली नर्वस थे जब वो अपनी पहली और आखिरी फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। वो फिल्म जिसके बारे में आज बात हो रही है, मूवी का नाम है फिर वही रात, 1980 की ये फिल्म, और इसमें थे राजेश खन्ना। अच्छा, डैनी जी ने कहा कि क्योंकि वो इस फिल्म में एक्टिंग भी कर रहे थे, इसकी वजह से वो अपनी पहली फिल्म के डायरेक्शन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए। ही सेड कि मैं दोनों में से एक काम कर सकता था, पर क्योंकि प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी साहब, जिन्होंने ये फिल्म उनको दी थी, वो चाहते थे कि डैनी इस फिल्म में एक्टिंग भी करें, तो उनको वो डुअल काम करना पड़ गया। और क्योंकि वो डायरेक्शन में पहली बार उतरे थे, तो वो उन दोनों को ठीक से संभाल नहीं पाए। पुरानी जीन्स पे ना आज इसी फिल्म की बातें चलेंगी। वेल, इस फिल्म से अपना डेब्यू किया था दी एक्ट्रेस किम ने, पर उनको इंट्रोड्यूस किसने किया था ये अभी आपको बताऊंगी। कहानी बहुत मजेदार है। कम राइट बैक, मैं हूं श्रेया।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: रहा है।
1: किम हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनका डेब्यू ऑपोजिट राजेश खन्ना होगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ शशि कपूर ने इंट्रोड्यूस किया था प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी साहब को किम से, और एनएन सिप्पी एक्चुअली लाइक्ड हर, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना है, मैं आपको उनके ऑपोजिट उतारूंगा। ये फिल्म थी फिर वही रात, जिसकी आज बात हो रही है, जो कि डायरेक्ट की थी डैनी जी ने। किम फिर मिली डैनी से इन द फिल्म कॉल्ड चोर मचाए शोर उनके सेट पर, एंड डैनी जी क्योंकि ये फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे फिर वही रात, दोनों में आपस में अच्छी दोस्ती हो गई। जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई तो किम एक्चुअली ब्लेम्ड हरसेल्फ, शी सेड कि वो ढंग से एक्टिंग नहीं कर पाई, उनकी पहली फिल्म थी एंड उनकी वजह से फिल्म फ्लॉप हुई। लेकिन ये बात सिप्पी साहब ने एकदम एक सिरे से नकार दी। ही सेड कि हम आपके साथ फिर से काम करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिकॉज ऑफ यू द फिल्म फ्लॉप। बट इमेजिन वॉट, शी नेवर गॉट रिपीटेड इन एनी ऑफ द एनएन सिप्पीज़ फिल्म अगेन। पुरानी जीन्स पे आज फिर वही रात की बातें हो रही है। अभी गाना भी सुनाऊंगी, कम राइट बैक, मतलब मैं नहीं सुनाऊंगी, इस फिल्म का गाना सुनाऊंगी।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सोचो इस रोल के लिए वोटिंग हुई थी पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ। एक कैंडिडेट थे जीतू जी जितेंद्र जी और दूसरे कैंडिडेट थे काका यानी राजेश खन्ना। वेल आज बात हो रही फिल्म फिर वही रात। वेल इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे डैनी जी और ये उनकी इकलौती डायरेक्टेड फिल्म बन के रह गई। इस फिल्म में पैसा लगाने वाले यानी इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे NN सिप्पी साहब। Now what happened was कि सिप्पी साहब चाहते थे कि जीतू जी इस फिल्म में आए, लेकिन डैनी जी ने कहा कि जीतू जी ना फिल्म के रोल के लिए मैच्योर नहीं दिखते, वो चाहते थे कि काका इस रोल में आए। अब काका का ना बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड उस टाइम पे एकदम फ्लॉप चल रहा था, सो दोनों के बीच में थोड़ी जय हुई डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर के बीच में। एट दैट टाइम दे डिसाइडेड कि चलो एक काम करते हैं, हम अपने ऑफिस के स्टाफ से वोट कराते हैं। एक्चुअली में जितना वहाँ पे कास्ट एंड क्रू था ऑफिस का, सबने वोट किया। दे हैड टू वोट अमंगस्ट जीतू जी एंड राजेश जी। एंड सोचो किसने जीता? ऑफ कोर्स इट वाज राजेश खन्ना। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
3: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

एक्ट्रेस किम के फादर ने ना उनको एक वार्निंग दे रखी थी, एक अल्टीमेटम दिया हुआ था कि 6 महीने के अंदर तुम्हारा डेब्यू हो गया तो फिर ठीक है, अदरवाइज इंडस्ट्री चेंज करना। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। आज जिस फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है फिर वही रात। 1980 की फिल्म है, 15 अगस्त 1980 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। राजेश खन्ना एंड किम थी इसमें। किम जिन्होंने अपना डेब्यू किया था इस फिल्म से, एक और जने हैं जिन्होंने इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था, दैट वाज डैनी। सो किम के फादर ने ना उनको ये वार्निंग दे रखी थी कि 6 महीने के अंदर अगर तुम्हें कोई अच्छी फिल्म मिल गई तो फिर करना, अदरवाइज अगर 6 महीने क्रॉस कर जाते हैं यू स्टिल डू नॉट हैव अ गुड फिल्म इन योर यू नो इन योर लिस्ट तो फिर आपको प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा, इंडस्ट्री चेंज करनी पड़ेगी। ये बात किम ने बताई थी अपने दोस्त शशि कपूर को। शशि कपूर उनको ले गए एनएन सिप्पी साहब के पास, और सिप्पी साहब डैनी जी के पास जो कि फिल्म बना रहे थे फिर वही रात। सो सिप्पी साहब ने शशि कपूर से प्रॉमिस किया था कि उनके दोस्त के लिए वो एक अच्छा लॉन्च प्लान करेंगे। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता था कि शी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी लॉन्च्ड Right opposite, none other than Kaka, yani Rajesh Khanna. Purani jeans pe, main hoon Shreya, come right back.

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

भाई उस जमाने में सोशल मीडिया पे भले ही ट्रोलिंग ना हो लेकिन फिल्मी मैगजीन्स कम नहीं होती थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड किम, उनकी ये डेब्यू फिल्म थी जिसकी आज मैं बात कर रही हूँ। इंडिया की हॉरर फिल्म जिसका नाम था फिर वही रात। इट वॉज डायरेक्टेड बाय डैनी जी एंड इसमें मेन लीड में थे राजेश खन्ना और उनके ऑपोजिट मैदान में पहली बार उतरी थी दी एक्ट्रेस किम। सो उनके लुक्स को लेकर के रादर उनके एक्सप्रेशंस को लेकर के बहुत सारा क्रिटिसिज्म उनको मिला था। फिल्मी मैगजीन्स ने लिखा था, फिल्मी पंडित्स ने बोला था एंड बाय वर्ड ऑफ माउथ तो इंडस्ट्री में बहुत स्प्रेड हो गया था दैट शी इज एक्सप्रेशनलेस। लेकिन जब किम ने इंटरव्यू दिया एक मैगजीन को तो उन्होंने कहा कि उनके डायरेक्ट

डैनी चाहते थे कि उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल ऐसे रहें, एकदम डेड पैन की तरह रहें। सो शी डिड व्हाट द डायरेक्टर आस्क्ड। अब भाई दोनों में कौन सही था ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इस फिल्म के बाद किम जी को काफी मशक्कत करनी पड़ी टू गेट अनदर फिल्म इन हर किटी। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ फिर वही रात, इसकी बातें चलती रहेंगी। कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर।
3: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
4: स्पाइडर्स हैव फ्री लाइफ साइकिल।
3: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने। वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
1: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: लिसनर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
7: Hot. आप
0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे हाफ श्रेया के साथ जाने का टाइम हो गया है, याने लेट्स हिट द हाईवे। वेल, आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज का हाईवे हिट आप मुझे डेडिकेट करना चाहते हो, क्योंकि वो है रवि साहब की आवाज है। मुझे जाने दो, अगर अभी नहीं गई तो कल मिलने फिर कैसे आऊंगी। बट यस, इन केस अगर आपको मुझसे बात करनी है, वन टू वन कॉन्वर्सेशन करना है जहां आप भी मुझसे कुछ बोल सकते हो, रेडियो पे तो सिर्फ मैं ही चपड़ चपड़ करती रहती हूँ। सो फॉर दैट, फेसबुक और इंस्टा पे माय हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA विद लव। ऑन दैट नॉट, गुड नाइट।

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मैं खत्म तो खेल खत्म।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
4: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
5: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you kyunki is film mein kai chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeeturaj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeeturaj जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं Jeeturaj ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची Jeeturaj फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय Jeeturaj विद फोर मिर्चीज
0: साथ Jeeturaj ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: और सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

गगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, शाम कनाई ले जाओ इसको घर, राधे ले जाओ इसको घर, राधे ले जाओ इसको घर।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: सोच बदलती है, फिर रास्ते बदलते हैं. कैसे? जानते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: वेलकम बैक सिस्टर श्रेया. कुछ समय पहले हम खाना खा रहे थे और एक कमरे में दो तीन और लोग थे और बड़ी प्यारी कॉन्वर्सेशन चल रही थी. तो एक हमारे ऑफिस में काम करती हैं, उनका नाम भी श्रेया है, वो आई आपके पास. और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अ टीनेज मदर. तो पहले तो मुझे लगा वो चाइल्ड मैरिज की बात कर रही हैं कि वो फिर मुझे समझ में आया कि कह रही हैं कि आई हैव अ टीनेजर एज अ सन. और आपने जिस खूबसूरती से उसका जवाब दिया, कमाल है. ये कहाँ से आता है आप में? मतलब हर सवाल का जवाब कैसे आता है आपके पास?
4: सवाल का जवाब नहीं है. आई थिंक हम लोग रोज जब स्पिरिचुअली स्टडी करते हैं, रोज सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमें पता होता है, पर कई चीजें स्टडी भी करनी पड़ती हैं. फॉर एग्जांपल, हम लोग लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, डांस करना सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं, पर कभी भी हम सोचना कैसे है उसके ऊपर बहुत, मतलब वो पढ़ते ही नहीं है, वो हमारी एक डेली लाइफ में, डेली रूटीन में वो चीज है ही नहीं. और इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में एक स्पिरिचुअल स्टडी होती है. दोनों चीजें, मेडिटेशन भी है लेकिन नॉलेज भी है. जो नॉलेज हम रोज लेते हैं, धीरे धीरे वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी नेचुरल थिंकिंग हो जाती है. सो हम लोग भी सुनाते हैं, लेकिन सुनाने से पहले सुनते हैं. वी ऑल्सो प्रैक्टिस मेडिटेशन, वी ऑल्सो लर्न, वी आर फर्स्ट स्टूडेंट्स. वेरी ऑनेस्टली, हम सब पहले स्टूडेंट्स हैं. आज भी हर रोज, एवरी डे, हर कोई जो ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, मॉर्निंग में पहले एक घंटा पढ़ता है उस दिन की जो भी स्पिरिचुअल क्लास होगी, जो भी उसके अंदर बातें होंगी, और रोज सुनते सुनते सुनते सुनते वो इन्फॉर्मेशन अक्यूमुलेट हो जाती है. फिर हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, हमारे एक्सपीरियंस में आ जाती है, एंड देन शेयरिंग बहुत नेचुरल होता है. शेयरिंग एक्चुअली करना नहीं पड़ता, सेवा करनी नहीं पड़ती है. आज आप कोई अच्छे होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, आप घर आकर के चार जनों को जरूर बताएंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप भी जाना. आप कोई अच्छी फिल्म देखकर आएंगे, आप जरूर औरों के साथ कहेंगे वो बहुत ही अच्छी फिल्म है, आप टाइम निकाल करके भी देखना. मैंने एनीथिंग दैट यू लाइक, एंजॉय, आपको उससे कुछ भी बेनिफिट होता है, यू एंड अप शेयरिंग विद पीपल. तो हम लोग शेयर करने से नहीं शुरू करते हैं. फॉर मेनी मेनी मंथ्स, फॉर मेनी मेनी ईयर्स, वो स्टडी जो है वो अपने लिए होती है. और फिर जब उसका एक्सपीरियंस होता है तो नेचुरली यू स्टार्ट शेयरिंग इट विद पीपल.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. गुड टच बैड टच अवेयरनेस ही प्रोटेक्शन है. कैसे आइए समझते हैं.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
2: तो मेरी बहुत प्यारी दोस्ती कह सकते हैं, वो पहले एक बहुत फेमस टीवी एंकर हुआ करती थी, तो उसके साथ मैं एक बार कॉफी पी रहा था और ऐसे किसी वार्तालाप से बातचीत शुरू हुई. शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग, वेरी नाइस एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन. क्या तो बात हुई पता नहीं, मुझे याद नहीं, लेकिन माइक के बारे में बात हुई या बॉडी शेमिंग या अनकम्फर्टेबल टच, बैड टच, गुड टच, कुछ तो बात हो रही थी. तो उसने कहा कि जब मैं टेलीविजन एंकर हुआ करती थी तो उस समय वायर्ड माइक्स होते थे, तो उसको शर्ट के अंदर से घुसाना पड़ता था. तो हमारे माइक दादा होते थे तो वो आके माइक्रोफोन डालते थे. तो कहते थे कि कई बार दादा जो हैं वो बहुत समय लिंगर करते थे वहां पे माइक्रोफोन लगाने के लिए. तो मैंने उसको पूछा तो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगता होगा. शी सेड हाँ लगता था, लेकिन एट वन पॉइंट टाइम मैंने उनको कहा दादा मेरे पास भी वही है जो आपकी मम्मी के पास, बहन के पास, बच्ची के पास है, तो आपको पता नहीं यहाँ क्या आनंद मिल रहा, आप देख लीजिए. तो आई सेड तुमको बुरा लगा, उनको बुरा लगा, उनको अजीब लगा. शी सेड नहीं, मुझे उस दिन बड़ा लिबरेटिंग लगा. मुझे लगा कि ऐसे क्या है, मतलब शरीर ही तो है, तो ऐसा क्या तुम देखने की कोशिश कर रहे हो, और ऐसा दिख भी नहीं रहा, ढकी भी हूं ना मैं. तो जब ये क्रिया चल रही थी मेरे दिमाग में वो वाक्य आया और वो औरत आई, वो मेरी फ्रेंड आई. इसी सिचुएशन में मैंने औरों को भी देखा है जहां वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं. तो जब आपने इसके पहले हम बात कर रहे थे कि अल्टीमेटली इट इज हाउ वी थिंक एंड प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन और हम कैसे हर चीज पे रिएक्ट करते हैं वो हम पे होता है, लेकिन इसी चीज को दूसरे लोग फिजिकल अब्यूज, बैड टच भी मान सकते हैं, जो हम सिखाते हैं स्कूल में बच्चों को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ भी ऐसा हो. जब ये कहना है कि नहीं देखो हम ही सोच के अपने संस्कारों से अपने मन में निकाल लेते हैं, फिर बच्चों को सिखाएंगे कैसे कि बैड टच गुड टच क्या होता है, किसके मन में क्या चल रहा है हमें कैसे पता होगा.
3: किसी चीज के बारे में अवेयर होना तो बहुत जरूरी है और इस प्रकार की एजुकेशन भी इस समय बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है, टाइम्स जब बदलते हैं और जिन चीजों की जरूरत होती है, चाहे वो सेक्स एजुकेशन है, चाहे वो गुड टच है, बैड टच है, उसकी एजुकेशन होना उसमें गलत नहीं है. लेकिन जब आप कहते हैं कि मैंने जब उसको बोला और मुझे बहुत लिबरेटिंग फील हुआ, नाउ आई एम नॉट सेइंग आप बोले भी नहीं, लेकिन कई बार जब हम बहुत ज्यादा किसी चीज को सप्रेस कर लेते हैं फिर जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो हमें कई बार वो बहुत लिबरेटिंग फील होता है. आप दबा रहे हैं ना, अंदर ही अंदर आप सफर कर रहे होते हैं, फिर आप एकदम बोल करके बहुत लिबरेटिंग फील करते हैं. पर जरूरी नहीं है कि उसका इम्पैक्ट सही ही होगा. केयरफुल होना बहुत जरूरी है, कहाँ कन्फ्रंट करना है, कहाँ नहीं करना है, किसी और को बता करके अपने को सेफ करना है. सी इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट यू नो जो एक होता है कि लड़ लेना, बोल देना, झगड़ा कर लेना, सल्यूशन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा फील होता है तो आपको केयरफुल तो होना ही पड़ेगा, जरूरी है. अगर आपको फील, कई बार तो एजुकेशन न भी हो लेकिन आपको वाइब्रेशन से भी

0: पता चल जाता।
1: जी बिल्कुल।
0: छोटे बच्चों को तो हमें एजुकेशन देनी पड़ती है क्योंकि उनको पता नहीं होता, तो उनको हमें ये सब चीजें सिखानी पड़ती है। आज कोई बस ड्राइवर है, कोई टीचर है, उनको समझ नहीं है, तो हम लिटरली उनको समझाते हैं गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। लेकिन जब आप एक अडल्ट हो जाते हैं तो आपके पास अगर इतनी एजुकेशन नहीं भी है तो भी एक वाइब्रेशन है, आपको पता चल जाता है। आप सेंस कर लेते हैं कि सामने वाले की जो आपके प्रतिवृत्ति है, उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो फीलिंग्स हैं, वो प्योर हैं कि इम्प्योर हैं। देन आपको केयरफुल भी होना है और समवेयर कई बार वो लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ती है कि वो ऐसा न कर सके, और उसके लिए अगर कोई स्टेप लेना पड़ता है तो वो भी लेना पड़ता है। बट कन्फ्रंटिंग क्या हो जाता है, रिलीजिंग नेगेटिव एनर्जी। आप डिस्टर्ब हुए, आपने उनके साथ झगड़ा किया, कई बार ऐसे में क्या होता है, अगर सामने वाला आई डोंट नो रिवेंज लेने के मूड में हो, वो भी तो हो सकता है ना,
1: तो आप अनसेफ हो गए,
0: आप और अनसेफ हो जाते हैं।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Morning, only on Mirchi. It's hot.
1: Healthy mind के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dignity मांगी नहीं, maintain की जाती है. कैसे? आइए जानते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: फिजिकल अब्यूज, बैड टच, कि हम नहीं चाहते कि हमारी बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ भी ऐसा हो, तो ऐसे केस में अगर ऐसी स्थिति आए तो आप क्या सजेस्ट करती हैं?
4: आप केयरफुल हो जाएं, आप असर्टिव होकर के उनको बोलें, आप उनको ह्यूमिलिएट नहीं करें, आप उनको रिजेक्ट नहीं करें, पर आप बहुत असर्टिव होकर के अपनी बात करें कि अगली बार दूसरा वाला सोचे. ऐसा नहीं है, कभी कभी जब हम नहीं बोलते हैं तो भी तो सामने वाले की हिम्मत होती है ना, लेकिन अगर हम स्टेप डाउन करते हैं और बहुत असर्टिव होते हैं तो सामने वाला भी थोड़ा सा केयरफुल हो जाता है. लेकिन उसको डिसरिस्पेक्ट करना या उसको ह्यूमिलिएट करना या उसको रिजेक्ट करना, तो कभी कभी अगर ऐसी फीलिंग उसके अंदर आ गई वो फिर कोई और रूप ना ले ले. हो जाता है ना, अगर आपने 10 लोगों के सामने अगर उनको रिजेक्ट किया या ह्यूमिलिएट किया तो उनके मन में आता है फिर हम भी आपको देख लेंगे, हमें लगता है हम कोई कम नहीं है, जो हम है भी नहीं. वी विल नॉट अलाउ एनीबॉडी टू टेक एडवांटेज. ऐसा नहीं है, चुप भी नहीं रहना है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि डिग्निटी, आप अपनी भी डिग्निटी बना करके रखें, सामने वाले की भी डिग्निटी बना कर रखें, जो कहना है कहें, हो सके तो जितना रिस्पेक्टफुली हो सके कहें. नहीं तो फिर आप अगर कहीं भी काम करते हैं तो आजकल तो हर वर्क प्लेस पर इतना सपोर्ट सिस्टम है, पहले तो नहीं होता था, लेकिन आज कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, मीडिया हाउसेज हैं, एक वेमेन के लिए अभी बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, बहुत अच्छी काउंसलिंग्स हैं, बहुत अच्छे ऐसे हैं जहां आप आकर अपनी कंप्लेन या आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसको डिग्निफाइड वे में रखें. आप पहले बोल लें, असर्टिव भी हो जाएं, उसके बाद भी अगर लगता है कि ये नहीं ठीक हो रहा है आप उस बात को बड़ों तक कहें या जो रिस्पॉन्सिबल है उन तक कहें. लेकिन I personally don't know for everybody, I can't say it for everybody, but I've always felt कि अगर आप कोई गलत तरीका यूज करते हैं तो उसका फिर गलत इम्पैक्ट भी किसी न किसी रूप में कभी न कभी लौट आता है. जस्ट वन थिंग, देरी भी नहीं करें. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. आप एक बार उस चीज को चला लें, फिर दूसरी बार चला लें, फिर 10 बार चला लें, ये कोई चलाने वाली चीज नहीं होती है. अगर आपको सच में लगता है, पता आपको लग गया है कि इनके जो वाइब्रेशन है वो ठीक नहीं है या तरीका ठीक नहीं है या इनका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, वेरी फर्स्ट टाइम पहली बार में ही उनको क्लियर करें, डोंट मेस विथ मी. लेकिन आप जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है कि हर एक की डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए, क्यों, कोई कितना भी गलत हो हमें उसके लेवल पर नीचे जाने की क्या जरूरत है.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: भारतवर्ष की पुण्य धरा पर गंगा मैया के अवतरण की ये कथा गंगा जल की ही भांति पावन और मनभावन है। गंगा अवतरण की ये कथा न केवल कानों में रस घोलती है बल्कि आत्मा को भी तृप्त करती है। तो सुनिए कैसे हुआ पतित पावनी गंगा माँ का धरती पर

राजा भगीरथ की कठिन तपस्या से ब्रह्मा ने धरती पर गंगा के अवतरण का वरदान दिया और ब्रह्मा के वरदान को भगवान शिव ने भी सिर माथे पर धारण किया। भगवान विष्णु के श्री चरणों का ये गंगा रूप

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: सच बोलना जरूरी है पर डिग्निटी के साथ, कैसे चलिए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मैं उस पावर स्थिति में नहीं हूँ कि आपको बोल सकूं कि यार डोंट मेस विद मी। एग्जांपल, एक पहला इंसान है ए, दूसरा इंसान है बी जो उसका बॉस है, और उसका एक और बॉस है सी। ए बहुत परेशानी में है क्योंकि बी बुरा बॉस नहीं है लेकिन इनसिक्योर बॉस है कि अच्छा तुम, वो बी ए को बोलता है कि तुम ये इसलिए कर रही हो क्योंकि तुमने, तुम्हें एक्स ने बोला है। अच्छा, मैं जब बोलती हूँ तुम नहीं सुनती हो, एक्स ने तुमको बोला, तुम बड़ा, तुम कूद गई हो करने के लिए, ये क्या बात हुई। वरना ओवरऑल ही इज अ वेरी नाइस बॉस, बहुत अच्छा बॉस है ए, बहुत रिस्पेक्ट करती है बी का, और कहते हैं ज्यादातर ये बहुत अच्छा होते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें इनसिक्योरिटी आ जाती है, उस कारण बहुत दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे कभी जो सुपर बॉस है सी, एक दिन ऐसे घूमते फिरते ऐसे आ गया, तो बोल रहा है तुमने ये क्यों नहीं किया, और वो एक ही कमरे में ए बी सी तीनों बैठे हैं। सी ए को डांट रहा है कि तुमको मैंने बोला था तुमने ये नहीं किया, ए ने चुपचाप सुन लिया, कुछ नहीं बोला, बी भी कमरे में है। थोड़ी देर बाद बी कमरे से निकला तो सी ने बोला, यार तुम बहुत समझदार लड़की हो, तुमको कब बहुत बार देखा, क्या हुआ। बोला आप बिल्कुल मत कहिएगा, लेकिन बी ने मुझे बोला था, आप प्लीज उन्हें मत बोलिएगा, वो बहुत बुरा मान जाएंगे, फिर वो मेरी वाट लगा देंगे। तो आपने जब कहा ना कि कभी कंप्लेंट करने से भी सीनियर के पास जाओ, तो रिवेंज भावना तो वहां से भी आ सकती है कि अच्छा तुमने मेरे सीनियर को कंप्लेंट कर दी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसे केस में क्या करें?
4: हमें वो करना होता है जो राइट है और सही तरीके से करना होता है, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस होंगे वो तो फेस करने ही है। एक होता है तरीका ही गलत था, और एक है कि जो करना है वो तो करना ही है, लेकिन जैसे कहते हैं सत्यता तो बोलना है लेकिन सभ्यता से बोलो।
3: अरे वाह, क्या बात है, सत्य बोलना लेकिन सभ्यता से।
4: एक तो है कि बोला ही झूठ या उससे किनारा कर लिया, वो तो चलो वो उस चीज की निशानी है कि आप कमजोर है। दूसरा है कि आपने बोला लेकिन आपने तरीका आपका ठीक नहीं था, वो ईगो की निशानी है
3: जी।
4: दोनों ही राइट नहीं है। लेकिन एक है कि आपको फेथ है, आपको उसके ऊपर विश्वास है, अपने कर्म के ऊपर विश्वास है, और आपने उसको सही तरीके से भी किया, विच इन इटसेल्फ इज नॉट वेरी इजी। हम पहले तो ये भी फील होना कि ये राइट है, उतना भी तो इंट्यूटिव पावर होनी चाहिए, उतनी भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये राइट है, फिर उस राइट को बहुत डिग्निटी से कहना, उसके बाद फिर जो होगा उसको फेस करने की ताकत होनी चाहिए, और वो फेस करने की ताकत आ जाती है बिकॉज यू आर, व्हेन यू आर वेरी ऑनेस्ट। जैसे व्हेन वी स्टडी स्पिरिचुअल स्टडी, एक शब्द आता है सच तो बिठो नच, विच मीन्स जब आप बहुत सच्चे होते हैं तो आप अंदर में नाचते रहते हैं।
3: सच तो बिठो नच
4: माना जो सच्चा होगा, जो राइट कर रहा है, वो अंदर से बहुत हल्का होता है, उसमें बहुत पावर होती है, इनर पावर बहुत होती है। देन यू हैव द पावर टू फेस द कॉन्सिक्वेंस ऑल्सो, आपके पास कॉन्सिक्वेंस फेस करने के भी पावर आ जाती है। पर अगर झूठ होता है ना, तो वो ऑलरेडी आपको अंदर ही अंदर डिप्लीट कर देता है, आपका डर है, आपका झूठ है, आपका गुस्सा है, फिर आपके अंदर कॉन्सिक्वेंस फेस करने की भी ताकत नहीं होती है। सो व्हाट आई बिलीव इज, करना तो है ही ना, आप इनजस्टिस तो सहन नहीं करेंगे, आप गलत तो सहन नहीं करेंगे, तो जो भी आपको लगता है राइट मेथड है, जो भी राइट विधि है, आप करें, उसके बाद देखेंगे जो होगा। व्हेन यू डू राइट, राइट विल हैपन टू यू।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: इनसिक्योर लोगों को हैंडल करना एक साइलेंट स्किल है. कैसे, चलिए जानते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: तो एक एम्प्लॉय है, उसका एक मैनेजर है, और उस मैनेजर का एक सुपरवाइजर है जो बॉस है. एम्प्लॉय को जो तकलीफ होती है वो कहता है कि मेरा जो मैनेजर है वो बहुत अच्छा मैनेजर है, लेकिन इनसिक्योर मैनेजर है. वो हर बार ताना देता है कि अच्छा जब मैंने बोला तुमने नहीं किया, सामने वाले ने बोला तुमने कर दिया. तो सह लेती है एम्प्लॉय, कहती ठीक है वरना तो अच्छा ही बॉस है. कभी कभी इनसिक्योर, लेकिन कभी कभी वो इनसिक्योरिटी धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती बढ़ती बढ़ती है. अब परेशान हो रहा है एम्प्लॉय, तो वो जाके जब सुपरवाइजर आता है, सुपरवाइजर कह देती यार थोड़ी तकलीफ हो रही है. सुपरवाइजर कहता टेंशन मत लो, मैं मैनेजर से बात करता हूँ. सुपरवाइजर जाके मैनेजर से बात करता है, यार क्या कर रहे हो तुम, अच्छे आदमी हो, छोटी सी चीज है उसको सॉल्व कर दो. मैनेजर वैसे भी इनसिक्योर है, वो कहता अच्छा ऐसा किया, वो जाके एम्प्लॉय की और क्लास ले लेता है. तो ऐसे केस में जब आपने कहा एम्प्लॉय शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर कॉन्सिक्वेंसेज, बट ये कॉन्सिक्वेंस तो मेरे काम की वजह से नहीं हो रहा था, मैंने जाके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की, सुपरवाइजर के पास गया, सुपरवाइजर मैनेजर की क्लास ली, अब मैनेजर आ गया, अब तो तुम्हारा जीना मैं परेशान कर
4: दूंगा. दो चीजें हैं, इनसिक्योरिटी अलग चीज है, इट इज वन पर्सनैलिटी ट्रेट. लेकिन जब आप बात करते हैं किसी का गलत व्यवहार, यू नो व्हेन वी वर टॉकिंग अर्लियर अबाउट बैड टच गुड टच या इस, दैट इज वेरी डिफरेंट. वो तो रॉन्ग की कैटेगरी में जाता है ना. कई चीजें होती हैं जिसको हमें सॉर्ट आउट करना है, हम उस पर वर्क कर सकते हैं. वो आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, मेरे अंदर थोड़ी जेलसी हो सकती है, आपके अंदर गुस्सा बहुत है, आई कुड बी वेरी सेंसिटिव. हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, तो ये हो जाते हैं हम सबकी कोई छोटी छोटी इमोशनल बीमारी. लेकिन एक चीज होती है जिसको आप वर्क नहीं कर सकते, वो थोड़ा रॉन्ग के कैटेगरी में आती है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, फिजिकल अब्यूज है, गलत तरीके से टच करना है. वहां पर जब आप किसी के पास जाते हैं दैट इज वेरी डिफरेंट, देन यू हैव टू टेक हेल्प. आपने असर्टिव होकर के बोला, आपने अपनी तरफ से मेहनत कर ली, वहां बहुत सहन नहीं करना होता, दैट इज नॉट द प्लेस, उसको टॉलरेट नहीं करना होता. वहां पर कोई सोल्यूशन निकालना होता है, इवन इफ इट इज टू एन एक्सटेंट की मे बी आपको जॉब भी छोड़नी पड़े, बिकॉज वो कई चीजें नहीं सहन करनी होती, दैट इज इनजस्टिस, वो अनएथिकल हो जाता है. लेकिन जब आप इस चीज को इनसिक्योरिटी से नहीं कंपेयर कर सकते, इनसिक्योरिटी या जेलसी ये एक संस्कार है. वो किस लिए हो सकता है, माना समझो आई कुड बी इनसिक्योर सिर्फ इसीलिए कि मुझे ऐसा लगता है शायद मैं अपनी पावर नहीं लूज कर दूं, मैं अपनी वैल्यू नहीं लूज कर दूं, आई एम लिटिल इनसिक्योर, मैं अपने से ही इनसिक्योर हो रहा होता हूं. सो इनसिक्योर व्यक्ति क्या करता है, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है. उसको लगता है कि अगर मैं कंट्रोल करूंगा और सामने वाला अगर मेरे अनुसार कर देगा, सो दे स्टार्ट फीलिंग सुपीरियर और वैल्यूड और रिस्पेक्टेड, कि हाँ माना मेरी पोजीशन सेफ है,
3: मैं जीत गया.
4: एवरी इनसिक्योर पर्सन यू नो विल हैव अ लिटिल टीम एंड दे वांट टू कंट्रोल देम, और उसमें उनको लगता है कि मैं सेफ हूँ. बट जिसको हम कंट्रोल करते हैं वो सफोकेट हो जाता है. ऐसी सिचुएशन में आई विल नॉट सजेस्ट कि आप सीधा अपने सुपरवाइजर के पास जाएं.
3: अच्छा,
4: वो कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं है, वो तो लास्ट सोल्यूशन है, वो जरूरी नहीं है. यू नो वी आर सो एंग्रोस्ड इन आर हर्ट ओनली, समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू सी कि वो इमोशनली बीमार है. ये उनके अंदर संस्कार है. इनसिक्योर पर्सन को सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए और कुछ भी नहीं है. आप जैसे उसको थोड़ा थोड़ा रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे उसकी इनसिक्योरिटी ऑटोमेटिकली कम होने लगेंगे. पर हमारे साथ क्या होता है, उल्टा हो जाता है. जब वो इनसिक्योर है वो हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम उनके अनुसार करने के जगह और उल्टा करते हैं. हम एक दूसरे की बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं और एक दूसरे को समवेयर और नीचे ले जा रहे हैं. पर्पस क्या होना चाहिए, एक दूसरे को ऊपर लेकर के जाना, उसको थोड़ा सा इन्वॉल्व कर लें, उसको थोड़ा सा वैल्यू दे दें, उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दें.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानी।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
2: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
3: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है।
4: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग एसडी कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू।
5: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट।
4: ऑलरेडी अ होम ओनर? ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम। एसडी कैपिटल फंडिंग सर्विस जिस पर सब करे भरोसा।
6: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
11: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। It's a journey. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
1: कई बार सवाल आता मैं क्यों करूं, बड़े तो वो हैं, ओहदे में भी, उम्र में भी, रिस्पेक्ट में भी, सब कुछ तो दे रखा ऑर्गेनाइजेशन ने, उनको मुझे संभालना है, मैं क्यों जाके संभालूं उनको।
2: मैं इसलिए संभालूं बिकॉज वी ऑल आर अल्टीमेट पर्पस इज टू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। ये हमारा पर्पस है। हो सकता है एज में वो बड़े हैं, हो सकता है पोजिशन में वो बड़े हैं, हो सकता है और भी जो आपके प्रिविलेजेस हैं उसमें बड़े हैं, हो सकता है सोल पावर में आप ज्यादा बड़े हैं, हो सकता है ना। उसमें कितनी बार कई पेरेंट्स आकर के कहते हैं ये बात तो मैंने अपने बच्चों से सीखी। होता है कि नहीं होता, ये तो उन्होंने मुझे सिखाया। मैं चिंता में थी पर उसने आकर के कहा मम्मी डोंट वरी ना, इट इज ओके, हो जाएगा, डोंट वरी। होता है ऐसा कि नहीं होता? तो एज में तो वो छोटे हैं पर कभी कभी वो भी हीलिंग करते हैं, और आपने कभी कभी देखा छोटे बच्चे बहुत अच्छी हीलिंग कर लेते हैं।
1: अरे कमाल,
2: जितनी हम भी नहीं कर पाते उतनी हीलिंग वो कर जाते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो पहला बेनिफिट किसको होता है?
1: हमें,
2: करने वाले को होता है ना। आप एक चीज हमेशा याद रखना, देने में लेना समाया है।
1: देने में लेना, अरे वाह, देने में लेना ही समाया, वाह।
2: फॉर एग्जाम्पल आज हम ये नॉलेज औरों के साथ शेयर कर रहे हैं, सबसे पहले बेनिफिट किसको होगा?
1: खुद का।
2: सबसे पहले बेनिफिट हमारा होगा, सबसे पहले हमारे कान सुनेंगे।
1: देने में लेना समाया है
2: मतलब यू विल ग्रो। आप अगर किसी को रिस्पेक्ट देंगे, आप अगर किसी से प्यार से बात करेंगे, आप अगर किसी को थोड़ा सा ज्यादा कम्युनिकेट कर देंगे, आप ही बढ़ रहे हैं, आप भी तो ग्रो हो रहे हैं ना। अच्छा, देने में लेना समाया, जो देंगे
1: वही वापस मिलेगा।
2: आप उनके इनसिक्योरिटी को खत्म कर सकते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा रिस्पेक्ट देकर खत्म कर सकते हैं, पर हम उनको हील नहीं करना चाहते। हम यही कहते रहते ये ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं। हम परफेक्ट हैं?
3: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Flawless तब बनते हैं जब डिफेक्ट छुपाते नहीं, सुधारते हैं. कैसे? चलिए जानते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: आप कह रहे हैं नहीं, उनकी आप नेगेटिविटी मत देखो, आप थोड़ा उनको और रिस्पेक्ट दो. तो ये तो उनको बटर करने जैसा हो गया, मैं क्यों करूं बटर उनको?
4: हम बटर नहीं कर रहे हैं. हाँ. हम क्यों बटर करें? सी अगेन, इट्स अबाउट द इंटेंशन ना. इंटेंशन में क्या है? बटर करने की इंटेंशन होती है व्हेन आई वांट समथिंग फ्रॉम यू, और वैसे रिस्पेक्ट देने की इंटेंशन होती है आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट समबडी ना. ये मेरा नेचर है रिस्पेक्ट देना. क्या आई थिंक राइट फॉर यू, आई रेडिएट राइट एनर्जी फॉर यू, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए. और एक होता है कि बटर करना क्या होता है, आई एम बीइंग नाइस बिकॉज आई हैव एन एजेंडा.
3: नो, आई एग्री, ये बिल्कुल सही कह रही है. बट वो एम्प्लॉय कह रहा है मैं तो रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं तो मैनेजर का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो इनसिक्योर है, उल्टा आप मुझे ही आके बोल रहे हैं. मैं आपको सुपरवाइजर के पास प्रॉब्लम लेके गई हूँ, आप मुझे बोल रहे हैं
4: तो बीमार कौन है? बीमार कौन है? जैसे घर में कोई बीमार होता है तो फिर सेवा किसको करनी पड़ती है? जो ठीक है वही तो सेवा करेगा ना. अगर समझो मदर भी बीमार है तो औहदे में तो मदर बड़ी हो गई, लेकिन अभी घर में मदर बीमार है तो सेवा किसको करनी पड़ेगी?
3: बच्चे को.
4: हुआ था ना, हमने देखा ना कोविड आदि में पेरेंट्स बीमार थे तो बच्चे कर रहे थे ना सेवा, कि बच्चे ये कह रहे थे कि नहीं हम क्यों सेवा करेंगे, ये बड़े हैं ये सेवा करें. इसमें बड़ा छोटा नहीं होता है.
3: पर वो घर है हमारा, हमको संभाल के चलना है, घर है, प्यार है, बहुत सारे रिश्ते हैं, ये प्रोफेशनल सेटअप है, अपना काम करो जाओ.
4: आप अपने घर से ज्यादा समय कहाँ रहते हैं?
3: ऑफिस में रहते हैं.
4: तो इसको घर बना ले. इसको घर बना. घर क्या होता है? जब दो लोग काम करते हैं तो वो एक रिश्ता ही है ना, चाहे आप उसको सीट एनर्जी तो एक्सचेंज हो ही रही है. आप घर में एक घंटा रहते हैं, आठ घंटा आप ऑफिस में रहते हैं, अगर वहाँ आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तो वही एनर्जी तो आपने घर लेकर के जानी है. वही एनर्जी तो घर लेकर के जानी है ना, जो यहाँ पर आठ घंटा एक्सपीरियंस करेंगे. और अगर यहाँ पर आप उसको अच्छे से नहीं लिव इन करेंगे तो घर जाकर वही तो अपने परिवार को रेडिएट करेंगे. इट इज जस्ट लाइक, हम सब परफेक्ट तो नहीं है. वर्क एक मीडियम है. सी वर्क भी क्या है, इस जर्नी के दौरान हम सब अपने को बेटर बना रहे हैं. कौन कह सकता है कि हम परफेक्ट हैं? आज आप अपने बॉस के बारे में कह रहे हैं कि वो बहुत इनसिक्योर है. शायद उस बॉस से पूछेंगे तो उसके उसके भी मन में कोई ना कोई बात होंगे कि नहीं होंगे. उसको लगेगा ये बहुत रिस्पेक्टफुल नहीं है, ये बहुत कम्युनिकेट नहीं करते हैं, ये बहुत अपनी मर्जी कर सकते हैं. हो सकता है कि नहीं हो सकता. अब एक है कि हम एक दूसरे की कमियां देखते रहे, उसका चिंतन करते रहे, वो डिफेक्ट बढ़ता जाएगा. अगर उनकी कमी का इफेक्ट मेरे पर होगा तो वो मेरा डिफेक्ट बन जाएगा. हमें फ्लॉलेस बनना है, हमें डिफेक्टेड नहीं बनना है. आप एक बार उनकी बीमारी देखेंगे ना, क्या है, हम सभी अपनी अपनी बीमारियों में इतने उलझे हुए हैं. इफ यू रियली सी इनसिक्योरिटी कोई कंफर्टेबल फीलिंग थोड़ी ना होती है.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: हैप्पी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
2: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
3: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
2: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
4: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
5: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
4: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
6: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Relationships, word नहीं है, energies का exchange है. कैसे? चलिए समझते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: बट ये भी बिल्कुल सही है, हम सब में इतनी इतनी चीजें हमारे खुद के दिमाग में चल रही होती हैं, हम खुद अपने जीवन से इतने जूझ रहे होते हैं कि सामने वाले की बीमारी देखने का समय नहीं है हमारे पास.
4: रिश्तों का पर्पस क्या है?
3: बट मुझे तो रिश्ता ऑफिस में कायम करना ही नहीं है, मुझे करना है अपना काम करूं, जाऊं और ठीक है यहाँ पे आया काम किया.
4: तो फिर क्या फर्क पड़ता है अगर वो आपसे वो इनसिक्योर भी है तो रहने दे,
3: क्योंकि मेरे काम को अफेक्ट कर रहा है वो.
4: तो इसीलिए तो ना, रिश्ता क्या है, एनर्जी का एक्सचेंज है. ऐसे नहीं होता मुझे नहीं बनाना. सी, कभी कभी कई लोग क्या करते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, अलग अलग रह रहे होते हैं, फिर भी एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं.
3: हाँ बिल्कुल,
4: होता है ऐसा कि
3: ज्यादा ही सोचते हैं,
4: ज्यादा सोचते हैं कम सोचते हैं, पर हो सकता है ना. सो ये कोई रिश्ता ऐसा नहीं होता है कि हम दो एक साथ रहते हैं तो हमारा रिश्ता है, पेरेंट चाइल्ड का रिश्ता है. रिश्ता एनर्जी का एक्सचेंज होता है. अगर बार बार, जैसे हम बार बार मिलते हैं, बार बार रिकॉर्डिंग करते हैं बार बार, तो हमारा एक रिश्ता बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आप कुछ मेरे बारे में सोचेंगे, मैं कुछ आपके बारे में सोचूंगी. अब मैं कहूँ नहीं ऐसा नहीं हो, हम आए, हम रिकॉर्ड करें, हम चले जाएं, पर ऐसा नहीं होता ना. हम आएंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे, जरूर आप मेरे बारे में कुछ सोचेंगे, मैं कुछ आपके बारे में सोचूंगी, देन यू विल गो बैक. फिर आप अपने परिवार को कहेंगे आज हम मिले थे, हमें अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, या बहुत अच्छा लगा या बहुत बोरिंग लगा. सो दिस इज हाउ इट इज. रिश्ता इज व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन. वही रिश्ता है. रिश्ता मन में बनता है. मन में आप उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हो. तो जब हम रिस्पेक्ट देने की बात कर रहे हैं तो हम उनके बारे में मन में क्या सोच रहे हैं, बस उतना ही तो चेंज करना है. आपने यहाँ चेंज किया ना, वहाँ अपने आप चेंज हो जाएगा.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mir-

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग मेरी देसी फैमिली, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. यहाँ पर सुबह सुबह कॉफी और चाय से पहले एनर्जी मिलती है मिर्ची से. वो कैसे तुम्हें अगले कुछ घंटों में पता चलेगा. आज है 14th of August, मतलब इंडिया में कल इंडिपेंडेंस डे वाइब्स है. और इधर हम देसीज जो है ऑलरेडी मेंटली प्लान कर रहे हैं व्हाट्सएप स्टेटस, ट्राइकलर डीपी और वो एक पेट्रियोटिक सॉन्ग जो हर साल सडनली प्लेलिस्ट में आ जाता है, उसे कैसे यूज करें. बट हे, whether you are heading to work, dropping your kids off to school, stuck in traffic, या फिर pretend कर रहे हो कि बस 5 मिनट और सोना है, जो कुछ भी कर रहे हो, I've got you, I'm gonna be with you for a few hours. आज तुम्हें मिलने वाला है थोड़ा सा बॉलीवुड, थोड़ी सी मस्ती, ढेर सारी न्यूज एंड अपडेट्स एंड ऑफकोर्स ढेर सारे मिर्चीदार बैंगर्स. ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स विथ मी प्रिसिला. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

0: Energy Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning guys, मैं हूँ प्रिसिला, तो मेरे साथ में and this is मिर्ची mornings and on this day, चलो देखते हैं क्या हुआ था हिस्ट्री में. आज है 14th of August, 1040 में स्कॉटलैंड में किंग डंकन द फर्स्ट ने एक बैटल में अपनी जान गंवा दी थी एंड मैकबेथ बिकेम किंग. हाँ, शेक्सपियर वाला मैकबेथ. 1457 में द मेन सॉल्टर वॉज पब्लिश्ड, वन ऑफ द फर्स्ट मेजर प्रिंटेड बुक्स विद अ कंप्लीट डेट. बेसिकली 1457 में पब्लिशिंग इंडस्ट्री ने अपना प्रूफ दिया था कि हम एग्जिस्ट करते हैं. 1880 में जर्मनी का मैसिव कोलोन कैथेड्रल फाइनली कंप्लीट हुआ. कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड सेंचुरीज अर्लियर. 1935 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट साइन द सोसाइटी सिक्योरिटी एक्ट इनटू लॉ. अमेरिका का सोशल सेफ्टी नेट गॉट अ मेजर फाउंडेशन. 1945 में हैरी ट्रूमन अनाउंस जापान सरेंडर, इफेक्टिवली एंडिंग वर्ल्ड वॉर टू. एंड देन 1947 ऑगस्ट 14th, पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट एज ब्रिटिश इंडिया वॉज पार्टिशन्ड, लीडिंग टू वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ड्रामेटिक मास माइग्रेशंस इन हिस्ट्री. फॉर आवर साउथ एशियन कम्युनिटी, दिस डेट कैरीज बोथ नेशनल प्राइड and a complicated, painful history. And to all our Pakistani listeners, wishing you a peaceful and meaningful Independence Day. And finally, 2003 में a massive blackout hit the northeastern US and Ontario. Lights out हुई थी across the region. And for more Mirchi Mornings, connect करो मुझसे Insta और X पर. मेरा handle है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp का number 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Plus, zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
2: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
4: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington.
5: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
6: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 Oak Tree Road, Islington, New Jersey.
7: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
8: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
10: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: साथ जीतू राज only on Mirchi, it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा. And for God's sake किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी.
3: Spiders have free life cycle.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
7: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
8: Pyari brides, kya dhoond rahi ho apna dream wedding lehenga? To aa jaiye Miss India Bridal Store.
9: Miss India laaye hai latest bridal lehengas, exclusive reception aur party wear dresses and grooms ki sherwanis.
8: Visit us at 79 Middlesex Avenue, Iselin.
10: Tera kya hoga, Kalya?
11: Sardar, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
10: अब मिर्ची खा.
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग आइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड बिफोर यू डिसाइड आज अम्ब्रेला लेकर जाना है कि नहीं, लेट्स चेक आउट आज का वेदर का क्या हाल चाल है। राइट नाउ इट्स अराउंड 69 डिग्रीज फारेनहाइट, स्काइज जो है मोस्टली क्लियर है, सो मॉर्निंग कम्यूट का सीन जो है काफी चिल लग रहा है। बट डोंट गेट टू कम्फर्टेबल, क्योंकि 9 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में थोड़ी सी क्लाउडी कंडीशंस होने वाले हैं। उसके बाद अराउंड 2 बजे क्लाउड्स थोड़ा सा ब्रेक होने वाले हैं एंड वी आर लुकिंग एट अ पार्टली क्लाउडी सिचुएशन। टेम्परेचर वाइज टुडे यू आर लुकिंग एट द लो ऑफ 69 डिग्रीज फारेनहाइट एंड अ हाई ऑफ 87 डिग्रीज फारेनहाइट। With the humidity and all that jazz, it could feel like 89 degrees Fahrenheit. So, आज थोड़े से हल्के पुलके कपड़े पहनकर बाहर जाना। रेन का क्या हाल चाल है? 0 millimeters in the last 24 hours and also 0 expected in the next 24 hours. So, आज के दिन तुम्हारा अम्ब्रेला officially इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी पर जा सकता है। एंड कम्पेयर टू yesterday, pretty much the same high रहेगा 87 degrees Fahrenheit कल ही की तरह। And since it's August 14th, the eve of Independence Day in India and Pakistan ka Independence Day, whether you are celebrating, working, commuting or just looking for that perfect weekend vibe ya phir kuch achha sa status dalna chahte ho WhatsApp par ya Instagram par, मैं तुम्हारे साथ में ही हूँ। मेरा नाम है प्रिसिला, कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स और आप सुनने वाले हो मिर्ची आवर का थ्री। सबसे पहले द यूएस इज अर्जिंग पाकिस्तान टू इम्प्रूव फिस्कल ट्रांसपेरेंसी, बेसिकली ग्रेटर पब्लिक एंड पार्लियामेंट्री ओवरसाइट ऑफ मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस स्पेंडिंग। A US State Department report says Pakistan has made progress in making budget information public, but says gaps remain. Number two per India is set to have its first privately branded passenger train, with a Tejas Express being presented as the Sprite Tejas Express. मतलब कि रेलवे एडवर्टाइजिंग का अपग्रेड हो चुका है, अब आज सिर्फ ट्रेन के साइड में नहीं बल्कि ट्रेन ही ब्रांड बन गई है खुद से। And lastly, Cristiano Ronaldo and Jorgina ka marriage contract. What is it all about? The couple married under the separation of property regime in Portugal. Simple language mein, shaadi hai, pyaar bhi hai, but assets jo hain, wo automatically joint family nahi ban jane wale hain. Under this arrangement, what each person owns or acquires generally remains individually owned. And that's it for Mirchi Hour ka 3. मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप करना है तो नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033647244। Stay tuned and stay hot।

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La virba, la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको। आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट?
2: हाँ।
3: वन सेकंड सर। सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000।
2: हाँ।
3: वन सेकंड सर, आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
2: नहीं तो।
3: आपने नहीं किया है?
2: नहीं।
3: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
2: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
3: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम। मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है। आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाला, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
2: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है।
3: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
2: मैंने 2 पैसे निकाले।
3: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
2: मैंने कोई पैसा निकाला ना, मैं किसी को चेक दिया। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
3: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं, लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको। अब मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
2: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है।
3: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं। मुझे नहीं पता आप
2: ठीक बोल रहे हो
3: ना, आप मुझे क्या बताए? आप बतमी से बात मत करिए।
2: लगा दूंगा लाइन में
3: सर, मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए। बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी, स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं। सर ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे। 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है।
2: क्या
3: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
2: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
4: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है। 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में, 1,42,000 रुपए हैं। और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था।
3: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है। नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
10: सेलिब्रेट आजादी विद ईडन रोब एंड ब्रिंग द फीलिंग ऑफ होम टू USA. फ्रॉम ऑगस्ट 6th to 16th, एंजॉय फ्लैट 35% ऑफ ऑन अपैरल फॉर मेन, वुमेन, किड्स एंड फ्लैट 10% ऑफ ऑन फ्रेग्रेंसेस। विजिट आवर फ्लैगशिप स्टोर इन नॉर्थ ब्रंसविक, न्यू जर्सी, और शॉप
11: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
12: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
13: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice. This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint. Celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008, we're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
16: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
17: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
17: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
18: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
19: तेरा क्या होगा कालिया?
20: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
19: अब मिर्ची खा।
21: Radio Mirchi, it's hot.
22: Mirchi, fresh maal.
23: Love, loss और hope का musical सफर, वे जुनून।

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब ये सुनो, हैदराबाद में एक अलेजेड थीफ रिपोर्टेडली घर में घुस गया, उसने गोल्ड ज्वेलरी भी चुरा ली और भागने की बजाय घर के अंदर जाकर सो गया। होम ओनर्स जब वापस आए ना तो उन्हें कबर्ड पूरा रैनसैक्ड मिला है और ये जनाब ना फ्लोर पर घोड़े बेचकर सो रहे थे। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, पुलिस के हिसाब से बंदा जो था वो किसी सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस में था, इसलिए उसे नींद आ गई। तो बेटा निकला तो वो काम करने था घर से, मतलब डबल कोट्स में चोरी इज हिज काम, और वहां पर जाकर वर्क पर ही सो गया। वैसे जोक्स अबाउट ब्रेकिंग इनटू समवनस होम एंड स्टीलिंग इज ऑब्वियसली अ वेरी वेरी सीरियस क्राइम, लेकिन बहुत आसान तरीका बताती हूँ मैं तुम्हें अच्छी ज्वेलरी पाने का, वो है तनिष्क। तनिष्क पर चल रहा है फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, जहाँ पर तुम जा सकते हो, 25% ऑफ मिल रहा है तुम्हें डायमंड वैल्यू पर एंड मेकिंग चार्जेस पर। और इतना ही नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई पुरानी ज्वेलरी रखी है जो 18 कैरेट से अबव है, वो लेकर भी वहां जाओगे ना तो 0% डिडक्शन तुम्हें वहां पर मिल रहा है। यानी कि ऑफर्स बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग डील्स चल रही है, सब कुछ चल रहा है तनिष्क के फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स पर। वहां जाना तो बनता है, और अभी फिलहाल गाना बनता है, यानी कि मिर्ची दार गाना आने वाला है ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ। चिपक के बैठो यहीं पर, कहीं जाना नहीं, मुझसे इंस्टाग्राम और एक्स पर भी चाटी चाटी कर सकते हो तुम। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
3: तेरी मम्मी की जय।

लटीना चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद है तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
4: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे.
5: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा.
6: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा.
3: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है. Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. यस, योर एंटायर बिजनेस. Zoho One इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है. काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one.
7: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
8: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
9: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
10: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
11: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
12: Food?
13: Yes.
12: Shopping?
13: Yes.
12: Entertainment?
13: Double yes.
12: Aur health fair?
13: Of course. Sab kuch ek hi jagah. Indo-American Community Fair, September 12th or 13th, Sri Krishna Mandir, Morganville.
14: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
15: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
16: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
15: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
17: Ise apni jeb mein rakh le, Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है.
18: एक ही होता है.
15: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
19: It's 9:30 a.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब बारी आ चुकी है तालियां बजाने की, केक काटने की, कैंडल्स फूंकने की। एग्जैक्टली, यू गॉट इट राइट। अब हम बर्थडे की बात करने वाले। अगर तुम्हारा आज हैप्पी वाला बर्थडे तो किसके साथ तुम सेलिब्रेट करो, लेकिन उसके पहले हैप्पी बर्थडे टू यू। व्हाट अ डे टू बी बॉर्न, राइट? हैप्पी बर्थडे, ढेर सारी खुशियां तुम्हारी लाइफ में, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। हॉलीवुड से वीव गॉट हैली बेरी, मीला कुनिस, लेजेंडरी कॉमेडियन स्टीव मार्टिन, एनबीए आइकॉन मैजिक जॉनसन एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर डैनियल स्टील, सोप्रानो सुपरस्टार सारा ब्राइटमैन एंड साथ में अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस मार्सिया गे हार्डन। और हमारे देसी लोग भी कम नहीं, आज उनके भी हैप्पी वाले बर्थडे। सबसे पहले वीव गॉट द वेरी मेलोडियस सुनिधि चौहान, साथ साथ में कॉमेडी लेजेंड जॉनी लीवर का भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है। एंड वीव गॉट मोहित रैना, हु इज अ टेलीविजन एंड फिल्म फेवरेट एंड कैरेक्टर आर्टिस्ट मोहनीश बहल एंड टेलीविजन होस्ट एक्टर गौतम रोड़े। और अगर आज तुम भी अपना हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो तो तुम्हारा बर्थडे स्क्वाड जो है काफी बड़ा ब्लॉकबस्टर है आई मस्ट से। ऑल्सो, वैसे रिमाइंड करने की जरूरत तो है नहीं, बट आज है पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे और कल है इंडिया का इंडिपेंडेंस डे। ढेर सारी मुबारकबाद, ढेर सारी बधाइयां। एंड अभी बजाने वाली हूं मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, स्टे विथ मी ऑन सोशल मीडिया एज वेल। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। इंस्टाग्राम और एक्स पर एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
6: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
5: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
8: दिस इंडिपेंडेंस डे वी सेलिब्रेट नॉट जस्ट आवर फ्रीडम बट इंडियाज ग्लोबल फुटप्रिंट, सेलिब्रेटिंग इट्स 25th ईयर सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2001। VFS ग्लोबल टुडे सर्व्स ओवर 79 गवर्नमेंट्स, ऑपरेटिंग 4250 एप्लीकेशन सेंटर्स इन 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport, and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
9: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Iselin.
12: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings पर अभी latest gold rate update.
2: Raj Jewels wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,355. $4,350 per ट्राउंस के साथ गोल्ड के प्राइस ऑलमोस्ट $300 अपवर्ड ट्रेंड है एक हफ्ते में. कल से अबाउट $100 हायर. दोस्तों इंतजार ना करें, गोल्ड एग्रेसिवली अपवर्ड ट्रेंड की तरफ है. राज ज्वेल्स के साथ पैम्प सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार 1 ounce 100 grams किलो बार्स अवेलेबल टू इन्वेस्ट. आइए राज ज्वेल्स के साथ रिस्पॉन्सिबल गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग.
1: And there you have it, latest gold rate update suna tumne exclusively on Mirchi Mornings with me Priscilla. Connect karo mujhse Insta aur X par, mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.
0: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स और अब हम सुनने वाले हैं अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. सबसे पहले बांग्लादेश में सेवरल एरियाज आर फेसिंग सीवियर पावर आउटेजेस एंड लोड शेडिंग. फ्रस्ट्रेशन के बाद कुछ प्लेसेस पर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज को डैमेज करने की रिपोर्ट्स भी आई हैं. एंड स्टेट ओन्ड यूटिलिटी PBDB हैज आस्क्ड फॉर पुलिस सिक्योरिटी एट ग्रिड्स एंड सबस्टेशंस. गवर्नमेंट ने मॉल्स को 8 PM तक क्लोज करने और बिलबोर्ड्स को 7 PM तक स्विच ऑफ करने के ऑर्डर दे दिए हैं. नंबर टू पर अ हार्ट ब्रेकिंग न्यूज, पुर्तो रिकन बॉक्सर प्रिचर्ड कोलन हैज डाइड एट जस्ट 33, नियरली 11 ईयर्स आफ्टर सफरिंग अ सिवियर ब्रेन इंजरी ड्यूरिंग अ 2015 फाइट. ही अंडरवेंट इमरजेंसी सर्जरी एंड स्पेंट 221 डेज इन अ कोमा. His father announced his death on Thursday. It's a reminder that behind every sport, there are real people and real families, sending strength to everyone who loved him. And lastly, the Yash and Kiara Advani starrer Toxic has received an A certificate, meaning adults only, and the runtime is a solid 3 hours and 14 minutes. Plot reportedly follows a gangster seeking personal redemption in post-independence Goa, with violence and jealousy at the center of the story. Basically, Toxic naam is movie ka bilkul apt hai. And that's it for Mirchi Hour ka 3. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Insta aur X par mera handle hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. हेलो
2: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहे
2: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
1: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
2: नहीं
1: है?
2: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
1: तो,
2: हाँ वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी नहीं नहीं पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
1: बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास?
2: नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
1: ये कॉपी मुझे भी भेजना
2: राज जी। एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
1: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेजूंगा।
2: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। अब थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहे तो?
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
1: कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Celebrate Azadi with Eden Row and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey or shop nationwide at us.edenrow.com. Eden Row, a legacy of style.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
9: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
10: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
9: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस। This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted platform to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
11: इंडिया के रंग, सुर और स्वाद सब कुछ एक जगह।
12: एक्सपीरियंस जन्माष्टमी फेस्टिवल विद कृष्णा लीला, ट्रेडिशनल डांसेस, लाइव म्यूजिक, भजन्स, डिलीशियस फूड, शॉपिंग एंड किड्स एक्टिविटीज।
11: संडे अगस्त 23rd 1 to 6 PM, एल्मर बी बॉयड पार्क, न्यू ब्रंसविक। फ्री एंट्री एंड पार्किंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट न्यू ब्रंसविक कल्चरल सेंटर .com. डोंट मिस इट।
13: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
14: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
15: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
16: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
17: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा
18: बैक टू बैक गाना सुनेगा
19: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड वेलकम टू राशि जोन पार्ट वन, जहाँ पर हम पहली छह राशियों की बात करने वाले हैं।
2: मिर्ची राशि जोन
1: एरीज यानी कि मेष राशि, आज छोटी छोटी फ्रस्ट्रेशंस आ सकती हैं तुम्हारी लाइफ में। फीलिंग्स को सपास मत करो, पॉज लो, प्रोसेस करो, देन बोलो। हर इमोशन को म्यूट करना सोल्यूशन नहीं होता है। लकी कलर आज तुम्हारा है कोरल रेड, लकी नंबर इज 8। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज कोई फ्रेंड तुमको कोई इंस्पायरिंग पर्सन से इंट्रोड्यूस कर सकता है। न्यू कनेक्शन को चांस दो, बट अगर बॉडी कह रही है बॉस रेस्ट करना जरूरी है तो रेस्ट भी करो। लकी कलर फॉर यू इज सेज ग्रीन, लकी नंबर इज 14। जेमिनी यानी मिथुन राशि, वर्क बिजी रहेगा बट हेल्थ लुक स्टेडी। आज अप्रिसिएशन एक्सप्रेस करने का टाइम है, उसे भूलना नहीं। एक जेन्युइन थैंक यू कभी कभी किसी का मूड बहुत अपग्रेड कर देता है। लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 3। कैंसर यानी कर्क राशि, पॉजिटिव एटीट्यूड आज तुम्हारा सुपर पावर है। इमोशंस हैवी लगे तो क्लोज फ्रेंड्स पर लीन ऑन करो। स्ट्रांग बनना मतलब सब कुछ अकेले कैरी करना नहीं होता है। स्ट्रांग बनना इज कुछ भी आएगा आई विल फेस इट। लकी कलर पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 11। लियो यानी कि सिंह राशि, मून तुम्हारे साइन में है सो कॉन्फिडेंस इज ऑन, बट दूसरों की हेल्प करते करते अपनी बैटरी 0% तक मत लेकर आओ यार, थोड़ा सा रिचार्ज करो। लकी कलर फॉर यू इज एम्बर, लकी नंबर इज 6। वर्गो यानी कन्या राशि, फैमिली मैटर्स में एक्स्ट्रा पेशेंस रखो आज के दिन। बिग डिसीजंस को रश मत करो और अपनी मेंटल वेलबींग को प्रायोरिटी दो। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन 2 AM पर गूगल करना जरूरी नहीं है। लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 21। एंड दैट वाज द एंड ऑफ पार्ट वन ऑफ राशि जोन। बाकी बची छह राशियों को लेकर आऊंगी थोड़ी सी देर में, तब तक तुम सुनो ये मिर्चीदार बैंगर्स और मुझे जाकर फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com. Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 6

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और मेरे साथ में है बाकी बची हुई 6 राशियाँ.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: लिब्रा यानी कि तुला राशि, सोशल आउटिंग्स और रिलैक्सिंग टिप्स आज मूड को लिफ्ट करने वाले हैं. फाइनेंसेस भी पॉजिटिव और स्टेबल दिखाई दे रहे हैं. बस वेकेशन प्लान करते वक्त बैंक बैलेंस को ब्लॉक मत कर देना. लकी कलर फॉर यू इज पीच. लकी नंबर इज 17. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वर्क प्लेस प्रेशर थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकता है. स्टेडी स्टेप्स लो, सेल्फ कंट्रोल रखो, और हर ईमेल को पर्सनल अटैक समझने की जरूरत नहीं है. लकी कलर फॉर यू इज बर्गंडी. लकी नंबर इज 9. सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, छोटे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स रेस्टलेस एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं. काम रहो, फ्लेक्सिबिलिटी रखो, और हर डिटूर का मतलब डेस्टिनेशन कैंसिल नहीं होता है. लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज. लकी नंबर इज 25. कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आज न्यूट्रल चार्म फुल पावर में है. सिबलिंग या क्लोज फ्रेंड प्रैक्टिकल एडवाइस के लिए तुम्हारे पास आ सकता है. बेसिकली फैमिली का अनऑफिशियल गूगल मैप आज तुम हो. लकी कलर फॉर यू इज मस्टर्ड. लकी नंबर इज 4. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, ट्रैवल या कम्युनिकेशन में पेशेंस का टेस्ट हो सकता है. प्लान्स चेंज हो तो फ्लेक्सिबल रहो एंड राइड इट आउट. फ्लाइट डिले को पर्सनालिटी ट्रेट मत बना लेना. लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक ब्लू. लकी नंबर इज 13. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन राशि, पास्ट हेल्थ कंसर्न्स में इम्प्रूवमेंट्स के साइंस हैं. वन स्टेप एट अ टाइम लो, कोऑपरेटिव स्पिरिट रखो, एंड अपनी रूटीन को जेंटली फॉलो करो. लकी कलर फॉर यू इज सी ग्रीन. लकी नंबर इज 19. एंड दैट वाज योर स्टार्स का अपडेट आज के लिए. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: साथ जीतूराज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतूराज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी-छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: Spiders have free life cycle.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
7: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
8: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
9: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
8: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
9: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
10: रिश्ते विश्वास से बनते हैं रिश्ते निभाने पड़ते हैं ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स
11: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड इसलिन न्यू जर्सी
12: ओ दलजीत दुसान भाई आप क्या लेने आए हो
13: शुद्ध देसी घी
12: लो पारी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है
13: घी टेस्ट के लिए थोड़ा खाते हैं घी सेहत के लिए खाते हैं मुझे चाहिए शुद्ध देसी घी जो घर वाला टेस्ट दे जो ब्रांड भी हो ना वो ट्रस्टेड हो वो एक नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा
12: नानक घी पाजी
13: नानक घी चाहिए यार अगर आपको भी चाहिए शुद्ध देसी घी तो कहिए नानक घी चाहिए सो गुड सो प्योर इट्स नानक
14: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
15: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
14: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
16: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
17: तेरा क्या होगा कालिया?
18: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
17: अब मिर्ची खा।
19: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: with Priscilla. It's hot.
1: And that's it, my dost. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारी होस्ट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. अब खत्म होने वाला है ये शो, एंड बिफोर आई रैप अप तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताकर जाती हूँ. एक रीसेंट प्यू रिसर्च सेंटर सर्वे लुक्ड एट हाउ पीपल इन इंडिया एंड पाकिस्तान व्यू ईच अदर. द पोल फाउंड दैट 78% ऑफ इंडियंस सर्वेड एक्सप्रेस्ड एन अनफेवरेबल व्यू ऑफ पाकिस्तान, एंड 91% ऑफ पाकिस्तानी सर्वेड एक्सप्रेस्ड एन अनफेवरेबल व्यू ऑफ इंडिया. अब नंबर सुनकर रिएक्शन आना काफी नेचुरल है, लेकिन ये याद रखो, दीज आर सर्वे रिस्पॉन्सेज, नॉट अ डेफिनेशन ऑफ एवरी इंडियन एंड एवरी पाकिस्तानी. लेकिन ऑनेस्टली यार, हम साउथ एशियंस जो हैं, वो हर एक चीज में एक्सपर्ट्स तो होते ही हैं. फूड के नाम पर इंस्टेंटली अग्री करना, बिरयानी पर डिबेट हो सकती है, चाय पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, म्यूजिक, मूवीज, लैंग्वेज, फैमिली, ह्यूमर, सब कुछ पे अलग अलग व्यूज हो सकते हैं. और कई जगह पर फेमिलियरिटीज भी हो सकती है अक्रॉस रीजन. सो मे बी द पॉजिटिव टेक अवे इन दिस इज दैट वी डोंट हैव टू अग्री ऑन एवरीथिंग to recognize the humanity and shared culture on the other side. Thoda sa less us versus them and thoda sa more, hey, we are neighbors. And speaking of celebrating where we come from, Azadi ka celebration is here. Eden Robe is bringing the feeling of home to USA. From August 6th to 16th of August, yani ki do din aur bache hai, enjoy karo flat 35% off on apparel for men, women and kids. Saath mein 10% off extra bhi hai on fragrances. You can just go and visit their flagship store in North Brunswick, New Jersey. Ya phir online shopping bhi kar sakte ho nationwide. It's at us.edenrobe.com. That is E-D-E-N-R-O-B-E. That's my cue to say bye-bye. Follow me, Mirchi Pris is my handle name, M-I-R-C-H-I-P-R-I-S. Hope you have a wonderful weekend. Happy Independence Day to Pakistan and happy Advance May Independence Day to India. Abhi ke liye tada bye-bye. Stay tuned and stay hot.

0: Milci.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको। आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट?
2: हाँ।
3: वन सेकेंड सर। सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000।
2: हाँ।
3: वन सेकेंड सर। आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
2: नहीं तो।
3: आपने नहीं किया है?
2: नहीं।
3: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
2: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
3: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम। मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है। आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाला, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
2: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है।
3: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
2: मैंने 2 पैसे निकाले।
3: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
2: मैंने कोई पैसा निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
3: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं, लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको। मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
2: मुझे नोट लेके जा रहा है, उस पर मेरा नाम लिखा है।
3: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं। मुझे नहीं पता आप
2: ठीक बोल रहे हो
3: ना, आप मुझे क्या बताए? आप बतमी से बात मत करिए।
2: लगा दूंगा लाइन में
3: सर, मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए। बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी, स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं। सर ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे। 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है।
2: क्या
3: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
2: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
4: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है। 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं, आपके अकाउंट में 1,42,000 रुपए हैं। और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था।
3: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है। नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Celebrate Azadi with Eden Grove and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey or shop nationwide at us.edengrove.com. Eden Grove, a legacy of style.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
11: इंडिया के रंग, सुर और स्वाद सब कुछ एक जगह।
12: एक्सपीरियंस जन्माष्टमी फेस्टिवल विद कृष्णा लीला, ट्रेडिशनल डांसेस, लाइव म्यूजिक, भजन, डिलीशियस फूड, शॉपिंग एंड किड्स एक्टिविटीज।
11: संडे अगस्त 23rd 1 to 6 PM, Elmer B, Boyd Park, New Brunswick. Free entry and parking. For more information, visit newbrunswickculturalcenter.com. Don't miss it.
13: जैसी वालों तुसी तैयार हो, थोड़ी किस्मत चमकने वाली है क्योंकि एमी वर्क आ रहे हैं लाइव।
14: किस्मत बदल दी देखी मैं।
15: हाजा कुड़िए वन गाना प्ले के सीधे कॉन्सर्ट में।
16: नीर में कम तंदे सारे चट के, तेरी वंग दा लाला नाप।
15: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इन प्रेजेंट्स एमी विर्क लाइव फ्राइडे अगस्त 28 रात 8:30 से एट द ब्रांड न्यू वेन्यू कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर। बुक योर टिकट्स नाउ एट carteretpack.com, saiusa.com और sulekha.com। विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
10: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
15: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
17: क्या बनाया आज? शाही पनीर बनाए, कढ़ाई पनीर बनाए, मटर पनीर बनाए या फ्राई पनीर बनाए? अगर आपके पास नानक पनीर है तो आप कुछ भी बना सकते हैं। आंखों में चमक और चेहरे पे नूर सिर्फ ब्यूटी पार्लर जाने से नहीं आता, उसके लिए अच्छा खाना भी खाना पड़ता है। खाना भी वो जो क्वालिटी और टेस्ट में हो नंबर वन, जैसे आप सबकी पसंद नानक पनीर। सो गुड, सो प्योर, इट्स नानक।
0: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्याजी नी पावन उपस्थिति। 7 3 2 3 5 7 8 2 0 0 जय गुरुदेव।

0: lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
1: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
2: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
3: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.

सोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Desi khana,
4: desi shopping,
3: desi culture
4: aur desi entertainment.
3: Bas ek hi destination.
4: Indo-American Community Fair, September 12th aur 13th, Shri Krishna Mandir, Morganville.
5: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।

0: Mirchi.
1: Iscaba la puscaba la sacaba la. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहे
3: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
3: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
2: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
3: नहीं
2: है?
3: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा। हाँ, वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ।
2: पूरी
3: नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ हैं।
2: तो बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास?
3: नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना? ये
2: मुझे भी भेजना
3: राज जी, एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
2: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेज।
3: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
2: हाँ बिल्कुल बताइए।
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वांटेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
2: कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
9: सिमरन, तू कार छड़ के किधर जा सक रही है था? आई नो सिमरन, मेरी गलती है, मैं तेनू टाइम नहीं दे सकया।
10: नहीं राज, अपने विच पहला वर्गा हुण कुछ नहीं रहा, सब कुछ बदल गया, तू बदल गया, तेरे ड्रीम बदल गए, तेरे प्रेफरेंसेस बदल गए, कुछ है जो इन्ने सालों विच नहीं बदलिया? है कुछ?
9: नानक रसमलाई। हाँ सिमरन, हाँ नानक रसमलाई का टेस्ट आज भी वही है जो साडे व्याह तो पहला सी।
10: राज
9: सिमरन,
11: नानक ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ।
12: Celebrate Azadi with Eden Rove and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey or shop nationwide at us.edenrove.com. Eden Rove, a legacy of style.
13: जर्सी वालों, तुसी तैयार हो, थोड़ी किस्मत चमकने वाली है क्योंकि एमी वर्क आ रहे हैं लाइव।
14: किस्मत बदलती देखी मैं।
15: हाँ जा कुड़िये, वन गन आप लेके सीधे कॉन्सर्ट में।
16: नीर में कम तंदे सारे चटके, तेरी वंगदा लालाप।
15: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इन प्रेजेंट्स एमी विर्क लाइव फ्राइडे अगस्त 28 रात 8:30 से एट द ब्रांड न्यू वेन्यू कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर। बुक योर टिकट्स नाउ एट cartarettpack.com, saiusa.com और sulekha.com।
17: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ, शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 732-357-8200। जय गुरुदेव।
11: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स।
0: बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
18: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan Italia.
19: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
20: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
19: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
21: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the U.S.

0: साथ जीतू राज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Cadence, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you kyunki is film mein kai chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं, वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice. Amy Wirk live in New Jersey. Amit Jaitley of Sai USA Inc. presents Amy Wirk live on Friday, August 28th at Carteret Park.
6: Grab your tickets at SaiUSAInc.com or Sulekha.com.
7: प्यारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
9: वॉरिड अबाउट हाउ योर चाइल्ड विल स्टे कनेक्टेड विद देयर रूट्स और मेंटेन आवर ट्रेडिशंस
10: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
9: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 1 p.m. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
3: कह दूं तुम्हें
4: हाँ
3: या चुप रहूं
4: ना,
3: दिल में मेरे आज क्या है.

मोहिनी मोहिनी मोहिनी, पूरा एयरपोर्ट बस इसी आवाज से गूंज उठा था। पुरानी जीन्स पे हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। तो देखो, मुझे बताया कि पूरे दिन की थकावट अगर तुम्हें मिटानी है ना, तो बस यहाँ पे आने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तुम्हारे मेरे बीच में सिर्फ एक ही चीज होती है और वो है दीज एवरग्रीन रेट्रो सॉन्ग्स, और ऑफ कोर्स इन गानों के पीछे की कहानियां, उस रेट्रो जमाने की फिल्मों के पीछे की कहानियां। तो मैं अपना होमवर्क पूरा करके आती हूँ। आज जब मैं ये कह रही हूँ मोहिनी मोहिनी, तो बताओ कौन सी फिल्म पे एकदम रिसर्च करके आई है श्रेया? फुल होमवर्क, एब्सोल्युटली करेक्टली एप्टली डन। नहीं समझ में आया तो एक काम करो, कुछ गानों के उस पर जब मैं मिलूंगी तब बताती हूँ, तब तक सोचते रहो, फिर से रिपीट करती हूँ मोहिनी मोहिनी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना
3: क्या बाना
2: मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: भाई साहब, श्रीनिवास पुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
4: मोबाइल
5: ये सर आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर आया है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
4: क्या रिपोर्ट आ गई है?
5: यही क्या यह मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कम्प्लेट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
4: मोबाइल चोरी हो गया?
5: हाँ जी। भाई साहब हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
4: हाँ पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
5: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कम्प्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
4: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
5: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कम्प्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
4: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
5: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
4: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
5: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवास पुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
4: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
5: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
4: हाँ जी सर।
5: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
4: अच्छा बात करवा दो, कौन है
6: ये? ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
4: कुकड़ों को
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
8: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
9: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
10: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
11: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
12: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर in demand healthcare careers.
11: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
13: India ke rang, sur aur swad sab kuch ek jagah.
14: Experience Janmashtami festival with Krishna Leela, traditional dances, live music, bhajans, delicious food, shopping and kids activities.
13: Sunday August 23rd 1 to 6 PM, Elmer B, Boyd Park, New Brunswick. Free entry and parking. For more information, visit newbrunswickculturalcenter.com. Don't miss it.
15: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
16: ਆਈ ਇੰਜੋਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮਾਮਾ।
17: ਅਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ।
11: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲਈ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਯੈਸ, ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਏਕ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਏਕ, ਜ਼ੋਹੋ 1। ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1।
18: जैसी वालों तुसी तैयार हो, थोड़ी किस्मत चमकने वाली है क्योंकि एमए वर्क आ रहे हैं लाइव।
19: किस्मत बदलती देखी मैं।
15: आजा कुड़िए वन गन अप्ले के सीधे कॉन्सर्ट में।
5: नीर में कम तंदे सारे छट के तेरी मंगता लाला नाप।
15: Amit Jaitley of Sai Vision presents Amy Virk Live Friday, August 28th, at 8:30 PM at the brand new venue, Carteret Performing Arts Center. Book your tickets now at carteretpack.com, saiusa.com or sulekha.com.
8: Oh no!
11: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
3: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
7: Ah.
0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मोहिनी मोहिनी एक ऐसी फिल्म जिसके पहले माधुरी दीक्षित ने भी नहीं सोचा था कि वो इंडिया की नंबर वन हीरोइन बन जाएंगी आफ्टर डूइंग दिस फिल्म। पुरानी जीन्स में आप श्रेया के साथ जैसे ही मैं मोहिनी मोहिनी कहती हूँ तो ऑफकोर्स आपको याद आ जाता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। वेल आज बात करेंगे फिल्म तेजाब की। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित वाज कास्ट ऑपोजिट अनिल कपूर। इस फिल्म में एक्चुअली बहुत सारे स्टार्स थे, चंकी पांडे थे, किरण कुमार थे, सुरेश ओबेरॉय थे, ऑफकोर्स अन्नू कपूर प्लेड अ वाइटल रोल, और माधुरी दीक्षित ने तब तक कुछ खास कदम नहीं जमाए थे और उनको लगा था कि वो इतने सारे स्टार्स के बीच में कहीं ना कहीं खो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इवन दो द रोल वॉज इन दैट ग्रेट दैट शी गॉट, लेकिन द सॉन्ग दैट शी गॉट वॉज 1 2 3। कहिए क्या सुनेंगे आप? ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि कहते हैं कि जिस कंपनी ने कैसेट्स रिलीज किए थे, दी ऑडियो कैसेट्स, उस समय यू नो कैसेट्स ही चला करते थे, तो उस कंपनी को बार बार लॉट में नए कैसेट्स का बैच रिलीज करना पड़ रहा था, बनाना पड़ रहा था, बिकॉज खत्म होते जा रहे थे मार्केट में। हाँ जी, सो तेजाब का ये वाला गाना भी थोड़ी देर में सुनाऊंगी, कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
6: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
5: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस। एमी वर्क लाइव इन न्यू जर्सी। अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इन प्रेजेंट्स एमी वर्क लाइव ऑन फ्राइडे ऑगस्ट 28 एट कार्टरेट पार्क।
7: ग्रैब योर टिकट्स एट saiusain.com और sulekha.com।
5: सेलिब्रेट आजादी विद ईडन रोव एंड ब्रिंग द फीलिंग ऑफ होम टू यूएसए। फ्रॉम ऑगस्ट 6 टू 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids, and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey, or shop nationwide at us.edenrobe.com. Eden Robe, a legacy of style.
8: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
9: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint. Celebrating its 25th year since its inception in 2001, VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: क्या कहा?

अच्छा, किस किस को शाहरुख खान का मन्नत अंदर से देखना है, देखना है, तो चलो मैं लेके चलती हूँ पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। आज जिस फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है तेजाब। 1988 की ये फिल्म थी। उसके बाद ना जब ये फिल्म रिलीज हुई तो 1990 तक आते आते माधुरी दीक्षित बिकेम द नंबर वन हीरोइन ऑफ इंडिया। वेल एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मन्नत की बात कर रहे थे हम। देखना है तो आपको ये फिल्म फिर से देखनी पड़ेगी, क्योंकि शायद जब ये फिल्म बनी तो आपको नहीं पता होगा। इस फिल्म में अनुपम खेर का जो बंगलो दिखाया गया है और उसके शॉट लिए गए हैं, वो बंगलो अंदर से

भी दिखाया गया है, बाहर से भी दिखाया गया है, वो है शाहरुख खान का मन्नत। आई एम श्योर अब इतने साल हो गए उसमें बहुत सारा रेनोवेशन हो गया होगा, बट यही वो बंगलो है जो कि शाहरुख खान ने खरीदा था। यस, सो इन केस यू वांट टू हैव अ लुक, आपको तेजाब फिर से देखनी पड़ेगी। अनुपम खेर वाला घर आपको अब पता है ना कि शाहरुख खान का मन्नत है। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, कम राइट बैक।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची पर उसको साथ जीतूराज only on मिर्ची it's hot।
1: Hi, my name is Peter Parker।
2: Okay then, Spider-Man Brand New Day आ गई है and for God's sake please थिएटर में जाकर ही देखो is what जीतूराज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड से किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है, यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है, ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है, क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal अर्थात Frank Castle aka Punisher and Tom Holland अर्थात Peter Parker जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने, वो क्या है। ओके, आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Inefficient, very complex,
7: clumsy or
8: confusion hi confusion.
4: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice. Amy Wilk live in New Jersey. Amit Jaitley of Sci USA Inc. presents Amy Wilk live on Friday, August 28th at Carteret Park.
11: Grab your tickets at sciusainc.com or sulekha.com.
12: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
13: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

वेटर इतना घबरा गया था कि उसने एम्बुलेंस बुलाई, और मैनेजर इतना घबरा गया था होटल का कि उसने तो सीधे पुलिस बुला ली थी। पुरानी जींस पे आप हो श्रेया के साथ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म टुडे तेजाब। अब हुआ ये कि गाना है ना सो गया ये जहां, इस गाने से पहले राइट बिफोर द सॉन्ग देयर वाज अ फाइट सीक्वेंस दैट वाज शॉट। अब ये फाइट सीक्वेंस शूट हो गया, लेकिन भाई एक्टर्स ये भूल गए, जैसे कि चंकी पांडे, अनिल कपूर एंड ऑल ऑफ देम, कि उन्होंने ना मेकअप नहीं उतारा। रात का समय था, ये गाना शूट हो रहा था, गाड़ी में उन्हें इतनी भूख लगी कि पास के एक होटल में चले गए। होटल वाले देख करके घबरा गए कि ये क्या खून से लदे पदे, एकदम खून ही खून हर जगह दिख रहा है, ये लोग कौन आए हैं। तो जो वेटर था वो इतना घबराया, उसने एम्बुलेंस बुला ली कि भाई इनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, और जो मैनेजर था उसने तो पुलिस को बुला लिया कि हाँ कोई ऐसा वैसा केस तो नहीं है। बाद में उनको बताया गया कि अरे भाई हमने मेकअप रिमूव नहीं किया है, हम सीधे सेट से आ रहे हैं। अब इस गाने की बात हुई है तो ये गाना थोड़ी देर में सुनाती हूँ। मजा आता है मुझे आपको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में। कम राइट बैक, दिस इज श्रेया ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी रेडियो मिर्ची.

दो फिल्में अनाउंस तो हुई लेकिन वो कभी भी बनी नहीं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, शायद ये तरीका था टीनू आनंद का डिंपल कपाटिया को ट्रिक करने का। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया एंड शहनशाह फिल्म की बात हो रही है जिसपे अमिताभ बच्चन थे। इस फिल्म की स्टोरी, इस फिल्म की कहानी लिखने वाली थी जया बच्चन जी। अमिताभ बच्चन एक अरसे के बाद इंडस्ट्री में वापस आ रहे थे, पॉलिटिक्स उन्होंने तब ज्वाइन कर लिया था और इसीलिए वो फिल्में कर नहीं रहे थे। बट फाइनली पॉलिटिक्स को टाटा बाय बाय कह करके यू टर्न मार करके फिल्में करने जब वो वापस आए तो शहनशाह वॉज द फर्स्ट फिल्म जिसका ऑफर उन्हें मिला था। अब ऐसे में डिंपल कपाटिया के पास ऑलरेडी ऑफर जा चुका था, उनके पास साइनिंग अमाउंट जा चुका था टू प्ले द लीड इन दिस कैरेक्टर, एज इन टू प्ले द लीड फीमेल। फिर क्या हुआ, मीनाक्षी शेषाद्री को रातों रात उनके जगह पे रिप्लेस किया गया। अब टीनू आनंद जो ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे वो चाहते थे कि डिंपल कपाटिया अपना साइनिंग अमाउंट वापस दे, लेकिन डिंपल कपाटिया का कहना था कि मैं तो फिल्म छोड़ के नहीं जा रही हूँ, आपने मुझे रिप्लेस किया तो मैं क्यों वापस करूँ। ये कंट्रोवर्सी उस टाइम की फिल्म मैगजीन्स ने जम करके छापी थी। सो टीनू आनंद ने एक कंडीशन रखी, ही सेड कि अगर वो उनका साइनिंग अमाउंट वापस कर देंगी तो वो अगले ही दिन अमिताभ बच्चन के साथ दो और फिल्में विद डिंपल कपाटिया अनाउंस करेंगे। अब डिंपल ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद बच्चन साहब, उनके लिए इतना ल्यूक्रेटिव ऑफर था कि उन्होंने हाँ कहा, पैसे वापस दिए और अगले दिन टीनू आनंद ने दो फिल्में अनाउंस भी करी। ये जो दो फिल्में थी उनका नाम था महाकाल और एक का नाम था आलीशान, पर ये दोनों फिल्में कभी बनी नहीं। इसीलिए डिंपल ऑलवेज फेल्ट कि टीनू आनंद ने चीटिंग की, जो कि एक्चुअली में की। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मिस्टर गगन, वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ। आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको। आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट? वन सेकेंड सर। सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000। वन सेकेंड सर। आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
3: नहीं तो।
4: आपने नहीं किया है?
3: नहीं।
4: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
3: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
4: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम। मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है। आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
3: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना किसी को चेक दिया है ना मैंने एटीएम यूज किया है।
4: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
3: मैंने 2 पैसे निकाले।
4: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
3: मैंने कोई पैसा नहीं निकाला ना मैं किसी को चेक दिया। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
4: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको। अब मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
3: मुझे नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है।
4: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं। मुझे नहीं पता आप
3: ठीक बोल रहे ना, वहीं आके
4: बजाऊंगा। आप मुझे क्या बताएं? आप बदतमीजी से बात मत करिए। सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए, बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी, स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं। सर ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे। 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है।
3: क्या
4: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
3: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
5: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है। 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं, आपके अकाउंट में 1,42,000 रुपए हैं। और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था।
4: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है, नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: Food?
10: Yes.
9: Shopping?
10: Yes.
9: Entertainment?
10: Double yes.
9: Or health fair?
10: Of course. Sab kuch ek hi jagah. Indo-American Community Fair. September 12th or 13th. Sri Krishna Mandir, Morganville.
11: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
12: Koi bhi din tyohar ho, uski shuruaat to muh meetha karwane se hi hoti hai. आपका प्यार आपका जीवन साथी तब तक नहीं बनता जब तक सामने वाले कहना दे बात पक्की हुई करो मुंह मीठा। अरे पड़ोसियों की गाड़ी भी कहा तब तक अच्छी लगती है जब तक मिठाई का डब्बा घर नहीं आ जाता। नया घर लो कराओ मुंह मीठा, नए घर में नया मेहमान आ जाए कराओ मुंह मीठा। ये मिठास खुशियों की है, ऊपर वाला देता रहेगा और हम बांटते जाएंगे। ले आपको तो भूल ही गए, इस शुभ अवसर पर आप भी कीजिए मुंह मीठा।
13: नानक फूड्स ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइव्स।
14: जैसी वालों तुसी तैयार हो, थोड़ी किस्मत चमकने वाली है क्योंकि एमए वर्क आ रहे हैं लाइव।
15: किस्मत बदल दी देखी मैं।
16: हाँ जा कुड़िए वन गन आप लेके सीधे कॉन्सर्ट में।
17: नीर में कम तंद सारे चढ़ के तेरी भंगदा लाला नाप।
16: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इन प्रेजेंट्स एमी विर्क लाइव फ्राइडे अगस्त 28th रात 8:30 से एट द ब्रांड न्यू वेन्यू कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर। बुक योर टिकट्स नाउ एट cartaretpack.com, saiusa.com और sulekha.com।
18: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
19: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानी।
18: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
16: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
1: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
18: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
9: Listener mein back to back gana sunega. Back to back gana sunega.
20: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: तीन शहर और 17 दिन एक गाने को शूट करने में लग गए थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर हिट फिल्म तेजाब। वेल, इस फिल्म का सारा होमवर्क करके लाई हूँ मैं, और जब मैं रिसर्च कर रही थी ना तो मुझे पता चला कि ये वाला गाना, ये जो आप सुन रहे हो ना, दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग विच इज़ बाय नितिन मुकेश, क्या हमिंग है। वेल, ये गाना जो अलका याग्निक के साथ उन्होंने गाया, इस गाने को क्योंकि पूरा रात में शूट किया जा रहा था, हाँ, कि टीम बैठी हुई, एज इन द एक्टर्स बैठे हुए हैं गाड़ी में, और वो रातों रात एक गाड़ी में बैठ करके रास्ता कवर कर रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने 3 सिटीज़ को क्रॉस किया था और 17 रातें लगी थी टू शूट दिस आइकॉनिक सॉन्ग।
1: सो गया है रास्ता।
0: आई नो, मुझे पता है कि आपको ये गाना पूरा सुनना, तो ये लो पूरा, कमिंग योर वे ओनली ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूँ श्रेया।

0: Friday, August 28th at Carteret Park.
1: Grab your tickets at SciUSAInc.com or Sulekha.com.
0: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint. Celebrating its 25th year since its inception in 2001, VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008, we're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport, and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
2: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजोकर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
3: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपकी खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा.
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
7: It's 2:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
8: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर.

फिल्म फेयर में ये कैटेगरी इस गाने के बाद शुरू हुई। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म तेजाब। वेल, ये जो गाना था, ये गाना इतना पॉपुलर हुआ और इसमें एक्ट्रेस का जो डांस मूव्स थे वो एवरीबडी वाज कॉपिंग इन द एंटायर कंट्री। वो इतनी पॉपुलर हुई कि फिल्म फेयर की कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई इस कैटेगरी का अवार्ड भी होना चाहिए हमारे पास। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट सरोज खान। सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तेजाब मूवी का ये गाना, और माधुरी दीक्षित का परफॉर्मेंस ओहो चुम्मेश्वरी था। वेल, आफ्टर दिस सॉन्ग बिकेम सो ह्यूज एंड इट गॉट सो पॉपुलर कि उसके बाद फिल्म फेयर ने ये डिसाइड किया, कमेटी ने डिसाइड किया कि ये कैटेगरी यानी बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी होना चाहिए। एंड देन ऑफकोर्स सरोज खान ये अवार्ड लेने वाली पहली कोरियोग्राफर बनी थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, यही वाला गाना सुनना तो सुनाती हूँ ना। पक्का इस बार, पक्का प्रॉमिस, बस 3 गानों के उस बार कमरे।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फिल्म फेयर में ये कैटेगरी इस गाने के बाद शुरू हुई। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म तेजाब। वेल, ये जो गाना था, ये गाना इतना पॉपुलर हुआ और इसमें एक्ट्रेस का जो डांस मूव्स थे वो एवरीबडी वाज कॉपिंग इन द एंटायर कंट्री। वो इतनी पॉपुलर हुई कि फिल्म फेयर की कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई इस कैटेगरी का अवार्ड भी होना चाहिए हमारे पास। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट सरोज खान। सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तेजाब मूवी का ये गाना, और माधुरी दीक्षित का परफॉर्मेंस ओहो चुम्मेश्वरी था। वेल, आफ्टर दिस सॉन्ग बिकेम सो ह्यूज एंड इट गॉट सो पॉपुलर कि उसके बाद फिल्म फेयर ने ये डिसाइड किया, कमेटी ने डिसाइड किया कि ये कैटेगरी यानी बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी होना चाहिए। एंड देन ऑफकोर्स सरोज खान ये अवार्ड लेने वाली पहली कोरियोग्राफर बनी थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, यही वाला गाना सुनना है तो सुनाती हूँ ना। पक्का इस बार, पक्का प्रॉमिस, बस 3 गानों के उस पर। कम राइट बैक।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था

0: तुमसे अच्छा कौन है।
1: अच्छा, कभी कभी ना फिल्म इतनी एंग्रॉसिंग होती है, इतनी एंगेजिंग होती है कि समटाइम्स ना लोग बहुत ऑब्वियस से सवाल भी नहीं पूछते। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ आज तेजाब फिल्म की बात हो रही है। तो क्या हुआ, अगर आप तेजाब देखोगे ना तो ब्रेक के पहले तक बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें नाना पाटेकर का सीन है, एज इन नाना पाटेकर ने शॉट किए हैं वो सीन्स, आपको दिखेंगे कुछ एकदम वाइटल वेरी इंपॉर्टेंट सीन्स। लेकिन ब्रेक के बाद सडनली नाना पाटेकर का कैरेक्टर ही गायब हो जाता है। लेकिन फिल्म इतनी इतनी मज़ेदार थी, इतनी अच्छी थी, बॉलीवुड का सारा तड़का उसमें लगा हुआ था कि लोगों ने यह सवाल किया ही नहीं कि अरे भाई नाना पाटेकर का हुआ क्या। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक विद मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना
3: क्या बाना
2: मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: भाई साहब, श्रीनिवास पुरी थाने से बोल रहा हूँ। मोबाइल कहाँ से मिला आपको? ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
4: क्या रिपोर्ट आ गई है?
5: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
4: मोबाइल चोरी हो गया?
5: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
4: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
5: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
4: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
5: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
4: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
5: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
4: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
5: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर बनाता हूँ।
4: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
5: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल्स आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
4: हाँ जी सर।
5: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
4: अच्छा बात करवा दो, कौन है
6: ये? ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
4: कुकड़ों को
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
8: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
9: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
11: इंडिया के रंग, सुर और स्वाद सब कुछ एक जगह।
12: एक्सपीरियंस जन्माष्टमी फेस्टिवल विद कृष्णा लीला, ट्रेडिशनल डांसेस, लाइव म्यूजिक, भजन, डिलीशियस फूड, शॉपिंग एंड किड्स एक्टिविटीज।
11: संडे अगस्त 23rd 1 to 6 PM, Elmer B, Boyd Park, New Brunswick. Free entry and parking. For more information, visit newbrunswickculturalcenter.com. Don't miss it.
13: Oh, Daljeet Dosanjh.
14: Oh, Bhadi.
13: Bhadi, aap kya lene aaye ho?
14: Shuddh Desi Ghee.
13: Lo, Bhadi, iska taste bahut hi achha hai.
14: Ghee taste ke liye thodo khate hain, ghee sehat ke liye khate hain. Mujhe chahiye shuddh Desi Ghee, jo ghar wala taste de, jo brand bhi ho na, wo trusted ho. Wo ek naam mere dimag mein nahi aa raha.
13: Nanak Ghee, Bhadi.
14: नानक घी चाहिए यार। अगर आपको भी चाहिए शुद्ध देसी घी तो कहिए नानक घी चाहिए। सो गुड, सो प्योर, इट्स नानक।
15: दिस इंडिपेंडेंस डे वी सेलिब्रेट नॉट जस्ट आवर फ्रीडम बट इंडियाज ग्लोबल फुटप्रिंट, सेलिब्रेटिंग इट्स 25th ईयर सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2001। VFS ग्लोबल टुडे सर्व्स ओवर 79 गवर्नमेंट्स, ऑपरेटिंग 4,250 एप्लीकेशन सेंटर्स इन 169 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। सिंस 2001 वी हैव प्रोसेस्ड ओवर 557.09 मिलियन एप्लीकेशंस एंड सिंस 2007 कैप्चर्ड मोर देन 240.14 मिलियन बायोमेट्रिक्स, कनेक्टिंग पीपल एंड नेशन। A trusted partner to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
16: जैसी वालों, तुसी तैयार हो, थोड़ी किस्मत चमकने वाली है क्योंकि एमी वर्क आ रहे हैं लाइव।
17: किस्मत बदलती देखी मैं।
18: हाँ जा कुड़िये, वन गाना प्ले के सीधे कॉन्सर्ट में।
19: नीर में कम तंदे सारे चटके, तेरी वंगदा लाला नाप।
18: अमित जेटली ऑफ साई विश इन प्रेजेंट्स एमी विर्क लाइव फ्राइडे अगस्त 28th रात 8:30 बजे से एट द ब्रांड न्यू वेन्यू कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर। बुक योर टिकट्स नाउ एट cartaretpack.com, saiusa.com और sulekha.com। विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
2: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
18: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस। दिस सितंबर 12th एंड 13th जॉइन अस एट द इंडो अमेरिकन
20: community fair at Shri Krishna Mandir, Morganville.
21: Enjoy delicious Indian food, shopping, live cultural performances, a health fair, kids activities and much more. Morning 10 a.m. to 7 p.m.
22: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
23: Tera kya hoga, Kalia?
24: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
23: Ab, mirchi kha.
25: Radio Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है अनिल कपूर की तेजाब मूवी को लेकर के। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ 50 वीक्स तक, 50 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पे राज किया था इस फिल्म तेजाब ने। अब हुआ क्या, तेजाब जब बन रही थी अनिल कपूर के पास डेट्स ही नहीं थी, ही वॉज बुक फॉर 2 ईयर्स। अब ये जो फिल्म की कहानी थी ना, ये कहानी एन चंदर ने बोनी कपूर को सुना दी। बोनी कपूर जो कि अपने भाई को लॉन्च कर रहे थे, अपने भाई के लिए अच्छी फिल्में देख रहे थे, उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये फिल्म तगड़ी होने वाली है। सो उन्होंने अनिल कपूर से कहा कि भाई ये फिल्म कर लो, लेकिन अनिल कपूर ने कहा मेरे पास डेट्स ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये फिल्म। सो देन बोनी कपूर स्टेप्ड इन एंड ही टोल्ड डायरेक्टर एन चंदर कि एक काम करना, जिस भी दिन अनिल की कोई फिल्म की शूटिंग कैंसिल होगी वो दिन तेजाब का होगा। सो ऐसे करते करते अनिल कपूर के कई सारे शूट जो कैंसिल होते थे, अनिल कपूर चले जाते थे तेजाब के सेट पर। एंड दिस वॉज हाउ तेजाब वॉज मेड। इमेजिन, इतनी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म वो एक्चुअली में अनिल कपूर की, क्या बोलूँ मैं, वो कैंसिल डेट्स पे बनी थी। कभी कभी हमें नहीं पता होता ना कि हम किसी चीज़ के लिए जिसके लिए शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं वो काम करेगी, या फिर जिसको बहुत कैजुअली ले लिया वो काम करेगी। पुरानी जीन्स पे श्रेया है आपके साथ, कम राइट बैक।

0: apni jag.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
9: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
10: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
9: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
10: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
14: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
13: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
15: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है.
13: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

अनु कपूर जी को अनिल कपूर का चेक मिल गया था पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज अनु कपूर का असली नाम अनिल कपूर था। वेल, मैं बात कर रही हूँ फिल्म तेजाब की, एंड अनिल कपूर इस फिल्म के मेन लीड में थे और अनु कपूर फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर थे। अब क्योंकि अनु कपूर का रियल नाम असली नाम अनिल कपूर था तो उनको ना अनिल कपूर का साइनिंग अमाउंट चेक पे मिल गया था। पहले तो उनको फिगर्स देख के यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, एंड देन ही रियलाइज्ड कि ओहो, ये तो अनिल कपूर का चेक आ गया मेरे पास। वेल, आज तेजाब की बातें श्रेया के साथ चलती रहेंगी, कहीं मत जाना गानों के उस पार, फटाक से मिलो, आज तो हाईवे पे चलेंगे ना फिर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
5: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
4: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
8: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
9: लिसनर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
10: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

दोस्तों हम सब ना अपनी कार में दो अलग पर्सनालिटीज लेके चलते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो हम बिल्कुल डिसेंट से सीधे साधे इंसान होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा फेवरेट बॉलीवुड गाना बजता है, स्टेयरिंग व्हील माइक बन जाता है, विंडशील्ड ऑडियंस और पूरी कार एक पर्सनल कॉन्सर्ट स्टेज। यार किसी को लिरिक्स परफेक्ट आते हो या नहीं आते हो, कोई सिर्फ लाला ला पे काम चला लेता है, और कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस तो इतना सॉलिड होता है कि एकदम कॉन्फिडेंस से गलत गाना गा देते हैं कि ओरिजिनल सिंगर भी सोचने लगता है कि भाई क्या गा रहे हो। तो चलिए आज एक काम करते हैं, जो अगला गाना है जो मैं बजाने वाली हूँ आपके लिए, उसे सिर्फ सुनना मत, जहां भी हो, कार में, किचन में, ऑफिस से घर जाते हुए, चैलेंज ये है कि उसके साथ आपको जोर से ये गाना गाना है। क्योंकि बॉलीवुड के गाने सिर्फ सुनने के लिए थोड़ी ना बने यार, वो तो साथ गाने के लिए भी बने हैं, अपना भी तो टच होना चाहिए। और हाँ, बाद में डीएम करके जरूर बताना कि आज के गाने में लिरिक्स याद भी थे या फुल कॉन्फिडेंस पे गलत गा रहे थे। टेल मी ऑन इंस्टेंट आरजी मिर्ची सिद्धि SIDDHI। तो चलिए फ्राइडे कार म्यूजिक शुरू करते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La virpa, la murga. Mirchi, murga.
1: हेलो,
2: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहे
2: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
1: लेकिन है किस लिए, ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
2: नहीं,
1: है?
2: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं। उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा। हाँ, वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ।
1: पूरी
2: नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे, या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ हैं,
1: तो बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास? तो
2: नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
1: ये कॉपी मुझे भी भेजना
2: राज जी। एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
1: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेज।
2: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। अब थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वांटेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
1: कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
8: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
9: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
8: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
10: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
11: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
12: Amy Wilk Live in New Jersey. Amit Jaitley of Sci USA Inc. presents Amy Wilk Live on Friday, August 28th at Carteret Park.
13: Grab your tickets at sciusainc.com or sulekha.com.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
15: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
14: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
15: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
9: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
16: Tera kya hoga, Kalia?
17: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
16: Ab, mirchi kha.
18: Radio Mirchi, it's hot.
19: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: की टाइम। बॉलीवुड की कुछ हीरोइंस का लुक ना फिल्म से निकलकर सीधा फैशन मेमोरी बन जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और कभी माधुरी का आइकॉनिक इंडियन लुक, तो कभी दीपिका का ग्रैंड ट्रेडिशनल स्टाइलिंग, तो कभी करीना का एफर्टलेस ग्लैम। यार फिल्म खत्म हो जाती है लेकिन वो लुक याद रह ही जाता है, क्योंकि मेमोरेबल स्टाइल यूजुअली लाउड नहीं होता। आउटफिट, कॉन्फिडेंस और वो केयरफुली चोजन फिनिशिंग टचेस मिलकर ही उसे सिग्नेचर बना देते हैं। और रियल लाइफ में भी किसी की वेडिंग हो, पार्टी हो या स्पेशल इवनिंग, उस पर हम सबका अपना अपना एक हीरोइन मोमेंट तो बनता है। और उसी के लिए तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स। एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन ऑन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबाउ 18 कैरेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो मूवी स्क्रीन हो या रियल लाइफ, तनिष्क के फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स के साथ अपना सिग्नेचर मोमेंट्स आप भी क्रिएट कर सकते हो। और दोस्तों मुझे जरूर बताना कि बॉलीवुड की कौन सी ऐसी हीरोइन है जिसका लुक आपको आज भी आइकॉनिक लगता है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI, क्योंकि मेरी फेवरेट हीरोइन का आइकॉनिक गाना आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata din

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
3: प्यारी ब्राइड, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
5: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
6: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
7: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
9: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, इज़लिन.

पूछ रहे होते थे कि मेरा कुर्ता कहाँ है, बच्चों को मैचिंग कपड़े पहनाया जा रहा होता था, और एंड में मम्मी खुद सबसे लास्ट में तैयार होती थी। तब वो ना बस घर का रूटीन लगता था, लेकिन आज सोचो तो वही छोटा सा केओस कितनी प्यारी सी फैमिली मेमोरी बन गई। और सबसे मजे की बात तो ये है कि अब हम बड़े हो गए, लेकिन फैमिली को रेडी करने का सीन ऑलमोस्ट वही है, बस अब कपड़े चूज करने की बारी हमारी। तो इस आजादी सीजन इसी फैमिली वाली फीलिंग को यूएसए में और करीब ला रहा है ईडन रोप। August 6 से 16 तक एंजॉय करें फ्लैट 35% ऑफ ऑन अपैरल फॉर मेन, विमेन एंड किड्स, और फ्लैट 10% ऑफ ऑन फ्रेग्रेंसेस। विजिट देयर फ्लैगशिप स्टोर इन नॉर्थ ब्रंसविक, न्यू जर्सी, या नेशन वाइड शॉप कीजिए एट us.edenrope.com। ईडन रोप, अ लीगेसी ऑफ स्टाइल। और दोस्तों, बचपन में घर से निकलते वक्त आपके घर में सबसे लेट तैयार होने वाला इंसान कौन था? डीएम मी ऑनेस्ट एट RJ मिर्ची सिद्धी, SIDDHI। और उसी लेट लतीफ के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hot Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you kyunki is film mein kai chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: सुनो ब्राइड्स अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
7: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
7: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road Islington
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: Kisi zamane mein, maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskurakar peesti. Apne ghar ke aangan mein, din bhar un masalon ko sehlaye. खुशियों के स्वाद चखती वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी दीप खाओ तो जानो
11: दिस गोल्डन आवर इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क सुनहरी होगी ड्राइव जब तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी से सुनहरी होगी हर वाइब
12: तेरा क्या होगा कालिया
13: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
12: अब मिर्ची खा
14: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

एक आवाज लेकिन हजार रंग। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर मैं सिर्फ गाने का नाम बोलूं, जैसे कि बीडी, शीला की जवानी, कमली, दरखास्त, तो क्या आपको लगता है ये सब अलग अलग सिंगर्स ने गाया है? यार यही तो कमाल है सुनिधि चौहान का, यही तो मैजिक है सुनिधि चौहान का। यार एक तरफ बीड़ी जलाई ले की रॉ एनर्जी, और दूसरी तरफ कमली का मैडनेस, और फिर देसी गर्ल का एटीट्यूड, और दरख्वास्त जैसे सॉफ्ट रोमांटिक मेलेडी। एक ही आवाज लेकिन हर गाने में एक नया कैरेक्टर। और शायद इसीलिए उन्हें सिर्फ प्लेबैक सिंगर नहीं, परफॉर्मेंस सिंगर भी कहा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ गाना नहीं गाती, उस गाने की पर्सनालिटी बन जाती है। तो चलिए आज उनके जन्मदिन पर करते हैं मिर्ची चैलेंज। आपके हिसाब से सुनिधि चौहान का कौन सा वर्जन अनबीटेबल है? द पार्टी सुनिधि, द रोमांटिक सुनिधि, या द पावर हाउस सुनिधि? डीएम ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए बर्थडे कल के नाम एक जबरदस्त बॉलीवुड गाना होने की आवाज में, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Sharda, let's do not donkey, have a funky time.
2: क्या माइक के सामने भी एक्टिंग होती होगी? शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अक्सर हम सोचते हैं कि यार एक एक्टर तो कैमरा के सामने एक्टिंग कर देता है, लेकिन एक सिंगर कहाँ एक्टिंग करती होगी? क्योंकि सुनिधि चौहान को जब हम सुनते हैं तो उस वक्त मुझे हमेशा लगता है कि जरूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ना एक फिल्म सेट जरूर होगा, क्योंकि अगर गाना मिस्चीवियस है तो आवाज भी उनकी वैसे ही हो जाती है, अगर रोमांटिक है तो सॉफ्टनेस भी आ जाती है, और अगर डांस नंबर है तो लगता है कि जी स्पीकर्स के बाहर तोड़ कर आ रही है। और इसीलिए जब स्क्रीन पर एक्टर परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, उसके पीछे आवाज भी उतनी ही एक्टिंग कर रही होती है। और शायद इसीलिए सुनिधि के गाने सिर्फ सुनाई नहीं देते, उनके गाने दिखाई भी देते हैं, हम उसकी एनर्जी फील भी कर पाते हैं। वैसे आप भी बताइए कि ऐसा कौन सा सुनिधि चौहान का गाना है जो आपके दिमाग में उसका पूरा पिक्चराइजेशन करवाता है। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए इस टैलेंटेड सिंगर सुनिधि चौहान के बर्थडे सेलिब्रेशन पे उन्हीं का ये अगला गाना सुनते हैं, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, Puscabana, Sacabana, Gabana, Burga, Burga, la Virgua, la Burga, Mirchi, Burga.
2: Hello.
3: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको. आपका अकाउंट नंबर 337103, राइट?
2: हाँ.
3: वन सेकेंड सर. सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000.
2: हाँ.
3: वन सेकेंड सर. आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
2: नहीं तो.
3: आपने नहीं किया है?
2: नहीं.
3: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
2: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
3: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम. मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है. आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला? किस पे शक है आपको?
2: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है.
3: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
2: मैंने 2 पैसे निकाले.
3: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
2: मैंने कोई पैसा नहीं निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया. एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
3: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको. अब मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
2: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है.
3: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं. मुझे नहीं पता आप
2: ठीक बोल रहे हो ना, वहीं
3: जाके आप मुझे क्या बताएं? आप बदतमीजी से बात मत करिए. सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए, बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी. स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं. सर ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे. 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है.
2: क्या
3: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
2: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
4: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है. 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं, आपके अकाउंट में 1,42,000 रुपए हैं. और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था.
3: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है. नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
9: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
10: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
11: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
10: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
12: क्या बनाए आज? शाही पनीर बनाए, कढ़ाई पनीर बनाए, मटर पनीर बनाए या फ्राई पनीर बनाए? अगर आपके पास नानक पनीर है तो आप कुछ भी बना सकते हैं. आंखों में चमक और चेहरे पे नूर सिर्फ ब्यूटी पार्लर जाने से नहीं आता, उसके लिए अच्छा खाना भी खाना पड़ता है. खाना भी वो जो क्वालिटी और टेस्ट में हो नंबर 1, जैसे आप सबकी पसंद नानक पनीर. सो गुड, सो प्योर, इट्स नानक.
13: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
14: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
13: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
15: जैसी वालों तुसी तैयार हो, थोड़ी किस्मत चमकने वाली है क्योंकि एमए वर्क आ रहे हैं लाइव.
16: किस्मत बदल दी देखी मैं.
17: हाँ जा कुड़िए वन गन आप लेके सीधे कॉन्सर्ट में.
18: नीर में कम तंदे सारे छट के तेरी वंगदा लाला नाप.
17: अमित जेटली ऑफ साई विश इन प्रेजेंट्स एमी विर्क लाइव फ्राइडे ऑगस्ट 28th रात 8:30 से एट द ब्रांड न्यू वेन्यू कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर. बुक योर टिकट्स नाउ एट carteretpack.com, saiusa.com और sulekha.com.
19: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
0: India ke rang, sur, aur swad, sab kuch ek jagah.
17: Experience.
0: Lions Janmashtami Festival with Krishna Leela, traditional dances, live music, bhajans, delicious food, shopping and kids activities.
20: Sunday, August 23rd, 1 to 6pm, Elmer B, Boyd Park, New Brunswick. Free entry and parking. For more information, visit newbrunswickculturalcenter.com. Don't miss it.
21: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
22: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
23: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
24: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
25: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
24: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
26: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
24: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
4: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका शुक्रवार की शाम में। वैसे तो हर तरफ आजादी का माहौल है और ये वीकेंड में भी आजादी के सेलिब्रेशंस होने वाले हैं विद परेड, लेकिन यार ये ऐसे ही दिन होते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरह की फ्रीडम जरूर चाहता है। फिर चाहे स्ट्रेस से फ्रीडम हो, कन्फ्यूजन से फ्रीडम हो, या फिर अपने फ्यूचर के डिसीजंस कॉन्फिडेंस से लेने का फ्रीडम हो। और जब बात होम ओनरशिप की हो तो सही इन्फॉर्मेशन और स्मार्ट प्लानिंग वही कॉन्फिडेंस देती है। तो चलिए देखते हैं हमारे जो दोस्त है बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज, उनका इस बारे में क्या कहना है। ओवर टू यू बीश।
27: शुक्र करो शुक्रवार है भाई और बहनों, मैं हूं आपका दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। लैंड टीम विशेस ऑल अ हैप्पी 80th इंडिपेंडेंस डे परेड इन न्यूयॉर्क सिटी। प्लीज गो आउट एंड सपोर्ट द FIA परेड एंड द US मार्केट्स एंड द वीक ऑन अ नेगेटिव नोट। व्हेन इट कम्स टू बाइंग अ होम, वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस आई हियर इज व्हिच मॉर्गेज इज राइट फॉर मी। The truth is, there's no one-size-fits-all answer. Different mortgage products are designed for different financial situations. For buyers looking for low down payment option, FHA loans can be a great choice and may especially be helpful for first-time buyers. Conventional loans are another popular option. Depending on your qualifications, they can offer competitive rates and flexible down payment options. And for buyers looking for high-priced properties, jumbo loans may be an option when the loan amount exceeds conventional loan limits. The important thing to remember is that the lowest rate or smallest down payment isn't necessarily the best loan for everyone. Your income, credit profile, assets, goals, and the property you are purchasing all matter. That's why I recommend call Bish Lion Mortgage at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.25%. 20-year fixed mortgage rate, 6.125%. 15-year fixed mortgage rate 5.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. And it is lionmtg.com. Once again, friends, Lion Mortgage specializes in purchase loans, refinance loans. So for more information, call us today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful weekend. Thank you very much. Bye-bye.
1: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: sets 5:30 PM. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shada, let's do not donkey, have a funky time.
2: क्या माइक के सामने भी एक्टिंग होती होगी? शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अक्सर हम सोचते हैं कि यार एक एक्टर तो कैमरा के सामने एक्टिंग कर देता है, लेकिन एक सिंगर कहाँ एक्टिंग करती होगी? क्योंकि सुनिधि चौहान को जब हम सुनते हैं तो उस वक्त मुझे हमेशा लगता है कि जरूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ना एक फिल्म सेट जरूर होगा, क्योंकि अगर गाना मिस्चीवियस है तो आवाज

करवाता है। डीएम मी ऑन इंस्टाट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए इस टैलेंटेड सिंगर सुनिधि चौहान के बर्थडे सेलिब्रेशन पे उन्हीं का ये अगला गाना सुनते हैं, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the Naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep Cow, the Jano.
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
8: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
9: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
10: Amy Wirk Live in New Jersey. Amit Jaitley of Sci USA Inc. presents Amy Wirk Live on Friday, August 28th at Carteret Pike.
11: Grab your tickets at sciusainc.com or sulekha.com.
12: Brought to you by Deep Foods. Deep Foods khao, to jano.
13: Tera kya hoga, Kalia?
14: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
13: Ab, mirchi kha.
15: Radio Mirchi, it's hot.

की टाइम। हर सिंगर की ना एक सिग्नेचर आवाज होती है, लेकिन कुछ सिंगर्स की सिग्नेचर ही होती है सरप्राइज। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है द सुपरस्टार प्लेबैक सिंगर सुनिधि चौहान की, जिनका है आज जन्मदिन। क्योंकि यार जब सुनिधि चौहान के गाने हम सुनते हैं ना, तो उस वक्त ये प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि यार ये गाना एग्जैक्टली कैसे होने वाला है। मतलब आज का फोक फ्लेवर हो सकता है, या फिर यार कल उनकी आवाज़ में रॉक सुनाई दे सकता है, कोई रोमांटिक गाना सुनाई दे सकता है, या फिर कोई क्लब का एंथम सुनाई दे सकता है। और शायद इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी ने ही उन्हें इतने सालों तक रेलेवेंट रखा है, क्योंकि यार हर जनरेशन के पास उनका अपना एक फेवरेट सुनिधि सॉन्ग है। किसी के लिए वो धूम मचाले हो सकता है, किसी के लिए उड़ी हो सकता है, किसी के लिए बीड़ी हो सकता है, तो किसी के लिए दरख्वास्त हो सकता है, तो किसी के लिए ए वतन हो सकता है। वैसे यार आप भी बताइए कि सुनिधि चौहान की प्लेलिस्ट का अगर एक गाना लाइफ टाइम के लिए रखना हो तो वो कौन सा होगा। DM ऑन इंस्टाग्राम जे मर्जी सिद्धि SIDDHI, और क्या पता शायद ये अगला गाना आपके फॉरएवर प्लेलिस्ट में जुड़े ऑफ द सुपरस्टार बर्थडे गर्ल सुनिधि चौहान। तो चलिए सुनते सुनिधि चौहान की आवाज में अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do Nautanki, have a funky time.
2: कुछ सिंगर्स गाना गाते हैं और कुछ सिंगर्स सीधा स्टेज को आग लगा देते हैं। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और अगर आपने कभी सुनिधि चौहान का लाइव परफॉर्मेंस देखा है तो एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि उनकी एनर्जी ना सिर्फ आवाज में नहीं है, पूरे स्टेज पर होती है। वो डांस भी करती है, ऑडियंस से कनेक्ट भी करती है और फिर भी वोकल्स उतने ही पावरफुल रहते हैं। और शायद इसीलिए उनके कॉन्सर्ट सिर्फ म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस नहीं लगते, एक सेलिब्रेशन लगता है। और ये कंसिस्टेंसी पिछले 3 डेकेड से चल रही है यार। बचपन में डेब्यू, फिर रुकी रुकी और उसके बाद एक के बाद एक आइकॉनिक सॉन्ग्स। तो चलिए आज सुनिधि चौहान ने हमारी बर्थडे गर्ल के लिए एक स्पेशल मैसेज जरूर भेजिए और मुझे ये बताइए कि अगर आपको सुनिधि चौहान का लाइव कॉन्सर्ट अटेंड करने का चांस मिले तो ऐसा कौन सा गाना होगा जो आपको सबसे पहले सुनना है, या फिर आपने अगर अटेंड किया है तो ऐसा कौन सा गाना जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम एमर्जी सिद्धी SIDDHI। और चलिए इस बर्थडे सेलिब्रेशन को कंटिन्यू करते हैं उन्हीं की आवाज के साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Busca bana, busca bana, saca bana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La virba la burga.
2: Milci, burga.
3: Hello.
4: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
3: मोबाइल?
4: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
3: क्या रिपोर्ट आ गई है?
4: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
3: मोबाइल चोरी हो गया?
4: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
3: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
4: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
3: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
4: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
3: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
4: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
3: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
4: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर बनाता हूँ।
3: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
4: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
3: हाँ जी सर।
4: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
3: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
5: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो?
3: क्या यार?
5: अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
3: कुकड़ों को
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
8: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
9: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
10: जैसी वालों, तुसी तैयार हो, थोड़ी किस्मत चमकने वाली है क्योंकि एमए वर्क आ रहे हैं लाइव।
11: किस्मत बदल दी देखी मैं।
12: हाँ जा कुड़िये वन गन आप लेके सीधे कॉन्सर्ट में।
13: नील में कम तंदे सारे चटके तेरी वंगदा ला ला ना।
14: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इन प्रेजेंट्स एमी विर्क लाइव फ्राइडे अगस्त 28 रात 8:30 से एट द ब्रांड न्यू वेन्यू कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर। बुक योर टिकट्स नाउ एट cartelettpack.com, saiusa.com और sulekha.com.
15: Inefficient, very complex,
16: clumsy or
17: confusion ही confusion.
15: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
18: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
19: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
18: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
19: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
6: सिमरन तू कार छड़ के किधर जा सक रही है था? आई नो सिमरन, मेरी गलती है, मैं तेरे को टाइम नहीं दे सकया।
8: नहीं राज, अपने विच पहला वर्गा हुण कुछ नहीं रहा, सब कुछ बदल गया। तू बदल गया, तेरे ड्रीम बदल गए, तेरे प्रेफरेंसेस बदल गए। कुछ है जो इतने सालों विच नहीं बदलिया? है कुछ?
6: नानक रसमलाई। हाँ सिमरन, हाँ नानक रसमलाई का टेस्ट आज भी वही है जो साडे व्याह तो पहला सी।
8: राज
6: सिमरन।
7: नानक, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ।
0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
1: The
16: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
20: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
21: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
20: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ऐसे कैसे हो सकता है कि वीकेंड का प्लान बने, स्क्रीन टाइम का प्लान बने, और वो भी बिना स्नैक के? नो नो नो नो। और इसीलिए दीप चिप्स लाए हैं आपका मूड सेट करने के लिए। अलग अलग फ्लेवर्स के, अलग अलग टाइप के चिप्स, चाहे फिर वो ब्लैक पेपर वाला थोड़ा बोल्ड, रेड चिली वाला थोड़ा फिल्मी, या नेचुरल एकदम सीधा साधा क्रंच। तो यार, एक बोरिंग से स्क्रीन टाइम को बनाओ फुल ऑन धमाकेदार। लाइट्स ऑफ, नेटफ्लिक्स ऑन, और दीप चिप्स का पैकेट क्रंच। ये सिर्फ स्नैक नहीं है, ये यार वीकेंड वाइब्स का रिमोट कंट्रोल है। तो अगर आपने ट्राई किया तो बताना कैसा लगा, और नहीं किया है तो आज ही ट्राई करना दीप चिप्स फ्लेवर का एटीट्यूड, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
3: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
2: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
3: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
4: Wilk Live in New Jersey. Amit Jaitley of Sci USA Inc. presents Amy Wilk Live on Friday, August 28th at Carteret Park.
5: Grab your tickets at sciusainc.com or sulekha.com.
4: This September 12th and 13th, join us at the Indo-American Community Fair at Sri Krishna Mandir, Morganville.
6: Enjoy delicious Indian food, shopping, live cultural performances, a health fair, kids' activities and much more. Morning 10 a.m. to 7 p.m.
7: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं रिश्ते निभाने पड़ते हैं ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स
9: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड इसलिन न्यू जर्सी
10: प्यारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
11: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन
12: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग फेस रीडिंग हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
16: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155 लॉग ऑन टू lionmtg.com
4: एमी विर्क लाइव इन न्यू जर्सी अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इन प्रेजेंट्स एमी विर्क लाइव ऑन फ्राइडे ऑगस्ट 28th एट कार्टेरेट पार्क
5: ग्रैब योर टिकट्स एट sciusainc.com और sulekha.com
17: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस विजिट कल्याण Young Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
18: Tera kya hoga, Kalia?
19: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
18: Ab, mirchi kha.
20: Radio Mirchi, it's hot.

0: আছে।
1: At 6:30 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
2: Sham Sharda, let's do not donkey, have a funky time.
3: ओटीटी प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा झूठ पता है क्या होता है? शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और वो कहना कि बस एक एपिसोड और, ये सेंटेंस बोलते ही ना इंसान ऑफिशियली 2 घंटे के लिए अनअवेलेबल हो ही जाता है, क्योंकि एक एपिसोड खत्म होता है, स्क्रीन पूछती भी नहीं और अगला शुरू हो जाता है, और हम सोचते रहते हैं कि ठीक है यार इस बार लास्ट एपिसोड, और फिर देखते ही देखते रात के 1:30 कब बच जाते हैं समझ ही नहीं आता। और शायद इसीलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म को हमसे ज़्यादा हमारी सेल्फ कंट्रोल पे भरोसा होता है, उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि ये लोग स्किप नहीं करने वाले, अगला एपिसोड बजेगा ही। वैसे आपके घर में बिंज वॉच चैंपियन कौन है? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। क्या वो आप हो, आपके स्पाउस हो, या वो दोस्त जो पूरी सीरीज एक वीक में खत्म कर लेता है? फिलहाल ओटीटी एपिसोड नहीं, लेकिन ये अगला बॉलीवुड गाना जो आप स्किप नहीं कर सकते, सुनते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
5: शशि वो मैनहट्टन है।
4: मैनहट्टन,
3: इट्स हॉट।
4: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
5: शशि वो मैनहट्टन है।
4: मैनहट्टन,
6: मैन

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Mirchi Bioscope. Saad Jeetu Raj. Only on Mirchi. It's hot.
2: Hi, my name is Peter Parker.
3: Oh, Cadence, Spider-Man, brand new day aa gayi hai. And for God's sake, please, theater mein jaakar hi dekho, is what Jeetu Raj will tell you. Kyunki is film mein kahin chhoti-chhoti aisi cheeze hain. Especially jab characters aapas mein baat karte hain, to unki whispers, unka pyaar, unka ghussa, wo theater mein jo maza deta hai, wo kahin bhi nahi dega. And for God's sake, kisi se bhi story mat suno. Don't take any spoilers. Film mein kahin aisi cheeze hain, jo tere ko itna surprise kar jayengi.
4: Spiders have three life cycles.
3: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू, एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं. एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeetu Raj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओह ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeetu Raj, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं Jeetu Raj ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची Jeetu Raj. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, रिकमेंडेड बाय Jeetu Raj विद फोर मिर्चीज.
1: साथ Jeetu Raj, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Celebrate Azadi with Eden Rove and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey or shop nationwide at us.edenrove.com. Eden Rove, a legacy of style. This Independence Day, we celebrate not just our freedom but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008, we're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport, and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
8: जर्सी वालों, तुसी तैयार हो, थोड़ी किस्मत चमकने वाली है क्योंकि एमी वर्क आ रहे हैं लाइव.
9: किस्मत बदल दी देखी मैं.
10: हाँ जा कुड़िए वन गाना प्ले के सीधे कॉन्सर्ट में.
11: नीर में कम तंदे सारे चढ़ के तेरी भंग दाला लानाप.
12: Amit Jaitley of Sai USA Inc. presents Amy Virk Live Friday, August 28th, at the brand new venue, Carteret Performing Arts Center. Book your tickets now at carteretpack.com, saiusa.com, or sulekha.com.
13: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
14: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
15: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
16: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
15: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
16: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzylin।
17: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
18: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
19: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground।
18: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
20: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
18: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
21: एक ही होता है।
18: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है दिल धड़कना दो मूवी के गल्ला गुड़िया गानों से। वैसे यार ये गाना स्क्रीन पर तो फुल ऑन फैमिली मस्ती लगता है, मतलब सब नाच रहे हैं, कैमरा घूम रहा है, एनर्जी नॉन स्टॉप है। पर पर्दे के पीछे असली कमाल ये था कि डायरेक्टर जोया अख्तर ने इस गाने को एक टेक में शूट किया है। जी हाँ, इसके लिए हर जो एक मूवमेंट था वो प्लान था, हर कैमरा टर्न प्लान था, हर एक्टर की एंट्री एग्जिट और कोरियोग्राफी डिटेल में रिहर्स की गई थी। तो कैमरा जब चालू हुआ यानी रोलिंग जब चालू हुई, उसके बाद पूरा गाना खत्म होने के बाद ही वो रोलिंग बंद की गई थी। और जोया अख्तर ने खुद कहा था कि इतनी प्लानिंग और मैनेजमेंट हुई थी तब जाके ये पॉसिबल हुआ है। तो सोचिए दोस्तों, हम तो कभी कभी ऑफिस में अपने बॉस को अगर छुट्टी मांगनी है तो एक स्ट्रेट वॉइस नोट भी एक टेक में रिकॉर्ड करके नहीं भेज पाते, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा गाना, पूरा का पूरा कास्ट, मूविंग कैमरा, डांस, टाइमिंग, एक्सप्रेशन, सब कुछ एकदम सिंक में चल रहा था। मतलब यार स्क्रीन पर जो फुल चिल फैमिली वाइब लग रही थी ना, उसके पीछे स्टॉप वॉच लेवल डिसिप्लिन और टीम वर्क था। तो ये बात तो बहुत जाहिर सी है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सबसे नेचुरल दिखने वाली चीज उसके पीछे सबसे ज्यादा प्लानिंग होती है। तो दोस्तों आप भी मुझे बताना कैसा लगा आपको ये पर्दे के पीछे का किस्सा। और ऐसे ही गानों के पर्दे के पीछे के किस्से जानने के लिए मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल ये वन टेक का कोरियोग्राफ किया हुआ गाना सुनते हैं, गल्ला गुड़िया फ्रॉम दिल धड़कने दो, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shardar, let's do not donkey, have a funky time.
2: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और आज का हंगामा आ रहा है सेन्योरिटा गाने से, फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। यार जब हम स्क्रीन पे ऋतिक, फरहान और अभय देओल को स्पेन में मस्ती करते हुए गाना गाते हुए देखते हैं तो फुल ऑन ट्रैवल वाइब्स तो मिलते हैं, पर पर्दे के पीछे ये गाना एक प्लान्ड एक्सपीरियंस था। जी हाँ, एक्टर्स ने स्पेनिश डांस और रिदम पे काफी प्रैक्टिस की थी और सिंगिंग पोर्शंस के लिए भी रिहर्सल्स हुए थे। रियल लोकेशंस पर शूट करना मतलब टाइमिंग, लाइट और पब्लिक कोऑर्डिनेशन का बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है। तो सोचिए दोस्तों, जो हमें बहुत ही स्पॉन्टेनियस रोड ट्रिप लग रही थी ना, वो एक्चुअली बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग का रिजल्ट था। तो क्या आप समझ गए कि बॉलीवुड में यार फन भी ना पूरे स्केड्यूल पे होता है, ये फन अनस्केड्यूल्ड वाला पार्ट सिर्फ हम रियल लाइफ लोगों के साथ होता है। तो चलिए ऐसे ही पर्दे के पीछे किसके किससे जानने के लिए मुझे जरूर बताइए। टेल मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। DM मी योर फेवरेट सॉन्ग और उसके पर्दे के पीछे की बातें, मैं बताऊंगी सिर्फ आपको। तब तक के लिए सुनते हैं सेन्योरिटा फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirci, burga.
1: हेलो
2: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहे
2: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
1: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
2: नहीं,
1: है?
2: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
1: मैगजीन है?
2: हाँ, वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ।
1: पूरी
2: नहीं, नहीं पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
1: बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए?
2: हाँ, नहीं आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
1: ये कॉपी मुझे भी भेजना
2: राज जी, एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा।
1: मैं अपने फ्रेंड्स को उनको भी भेजूंगा।
2: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। अब थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
7: Amy Wirk Live in New Jersey. Amit Jaitley of Sci USA Inc. presents Amy Wirk Live on Friday, August 28th at Carteret Park.
8: Grab your tickets at sciusainc.com or sulekha.com.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
11: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक, they're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
12: India ke rang, sur aur swad, sab kuch ek jagah.
13: Experience Janmashtami Festival with Krishna Leela, traditional dances, live music, bhajans, delicious food, shopping and kids activities.
12: Sunday, August 23rd, 1 to 6pm, Elmer B, Boyd Park, New Brunswick. Free entry and parking. For more information, visit newbrunswickculturalcenter.com. Don't miss it.
14: नो
15: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
16: कोई भी दिन त्योहार हो, उसकी शुरुआत तो मुंह मीठा करवाने से ही होती है। आपका प्यार आपका जीवन साथी तब तक नहीं बनता जब तक सामने वाले कह ना दे बात पक्की हुई। करो मुंह मीठा। अरे पड़ोसियों की गाड़ी भी कहां तब तक अच्छी लगती है जब तक मिठाई का डब्बा घर नहीं आ जाता। नया घर लो, कराओ मुंह मीठा। नए घर में नया मेहमान आ जाए, कराओ मुंह मीठा। ये मिठास खुशियों की है, ऊपर वाला देता रहेगा और हम बांटते जाएंगे। ले आपको तो भूल ही गए, इस शुभ अवसर पर आप भी कीजिए मुंह मीठा।
14: नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइव्स।
17: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।
18: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
19: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
18: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
20: जैसी वालों तुसी तैयार हो, थोड़ी किस्मत चमकने वाली है क्योंकि एमी वर्क आ रहे हैं लाइव।
21: किस्मत बदलती देखी मैं।
22: हाँ जा कुड़िए, वन गन आप लेके सीधे कॉन्सर्ट में।
23: नीर में कम तंदे सारे चटके, तेरी वंगदा लैला नाप।
24: Amit Jaitley of Sai USA Inc. presents Amy Virk Live Friday, August 28th, raat 8:30 PM se at the brand new venue, Carteret Performing Arts Center. Book your tickets now at carteretpack.com, saiusa.com or sulekha.com.
25: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008, we're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport, and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
26: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
27: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
28: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: एनीटाइम।
1: यार बॉलीवुड की एक अच्छी बात ये है कि सिंगर्स का काम ना कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी और आज भी एक अच्छी आवाज सीधा दिल तक पहुंच ही जाती है, चाहे रोमांटिक हो, सुकून भरी हो या थोड़ी इंट्रोस्पेक्टिव। आज के गाने लाउड होने से भी ज्यादा लास्टिंग होने पे फोकस कर रहे हैं और ऑनेस्टली ये फेज काफी रिफ्रेशिंग लगता है। तो आप भी बताना कि आपको बॉलीवुड सॉन्ग में सबसे ज्यादा क्या कनेक्ट करता है, लिरिक्स या वॉइस? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत आवाज का ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
7: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
1: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155. प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
9: एमी विर्क लाइव इन न्यू जर्सी. अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इन प्रेजेंट एमी विर्क लाइव ऑन फ्राइडे ऑगस्ट 28 एट कार्टरेट पार्क.
10: ग्रैब योर टिकट्स एट saiusainc.com और sulekha.com.
11: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
12: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी.
13: Honey, it's 11 p.m., our bedtime. Where are you?
14: I am not going to bed with you ever again.
13: But why? What did I do?
14: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
13: Oh, honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
14: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
13: Yes, yes, yes. Yes, come soon. Honey!
14: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
13: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
15: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
16: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: at 7:30 PM. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price. Sham Shanda, let's do
1: not donkey, have a funky time. हर घर की समर की ना अपनी एक सिग्नेचर साउंड होती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और गर्मी शुरू होते ही कुछ आवाजें रोज सुनाई देने लगती है, फैन फुल स्पीड पे, आइस ट्रे खुलने की आवाज, और फिर किचन से ब्लेंडर का चलना। बस उसके बाद सबको पता होता है कि कुछ ठंडा और मजेदार बनने वाला है। थोड़ी ही देर में ट्रे में आता है लंबा सा ग्लास, थिक क्रीमी मैंगो लस्सी से भरा हुआ, ऊपर हल्की सी मलाई, कभी थोड़े पिस्ता, कभी थोड़ी। इतनी देर में ट्रे में आता है लंबा सा ग्लास, थिक क्रीमी मैंगो लस्सी से भरा हुआ, ऊपर हल्की सी मलाई, कभी थोड़े पिस्ता, कभी थोड़ी इलायची। और पहले

0: नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर से, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तो चलिए, अब गर्मी का मूड थोड़ा ठंडा हो चुका हो तो बॉलीवुड के सुरों के साथ शाम को भी रिफ्रेशिंग बनाते हैं, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: दिस इज द ट्रिब्यूट टू तलाइवा फ्रॉम किंग खान एंड वन एंड ओनली
2: जय हनी सिंह।

0: साथ जीतूराज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeeturaj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशा एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Celebrate Azadi with Eden Grove and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey or shop nationwide at us.edengrove.com. Eden Grove, a legacy of style.
7: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
8: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses aur grooms ke liye stylish sherwanis.
7: Shaadi Shopping ka complete destination. Fashion Queen.
8: Visit today. 1358 Oak Tree Road, Islington.
9: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
10: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
11: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.
12: Tera kya hoga, Kalia?
13: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
12: अब मिर्ची खा
14: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

की टाइम। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। चलिए 8 बजने वाले हैं, इसका मतलब मेरा वीकेंड शुरू होने वाला है और इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय, टाटा, सायोनारा टू यू गाइस। लेकिन आप कहीं ना जाइए क्योंकि आपकी पार्टी यहीं पर शुरू हो सकती है। जी हाँ, क्लब मिर्ची शो आ रहा है, तो बस डीजे की जरूरत ही नहीं है, गाने यहीं पर बजाइए और अपनी पार्टी शुरू कीजिए राइट हियर ऑन मिर्ची। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, दिस इज मिर्ची सिद्धि साइनिंग ऑफ।

Happy Independence Day, everybody. Well, independence का मतलब सिर्फ आजादी मिलना नहीं, आजादी का मतलब है अपनी चॉइस की responsibility लेना, क्योंकि फ्रीडम में फ्री है, responsibility बिल्कुल फ्री नहीं. Happy Independence Day once again, and with that I start today's Club Mirchi Independence Day special with DJ Richard and Mirchi Oyontika. Jai ho.